रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि। तदनुसार 17 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। श्रोताओं, 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा हमारे कार्यक्रम सुप्रभात का, और सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम, जिसमें कि आज आप सुनेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर विशेष कार्यक्रम, और 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जो कि लेटेस्ट सिटी हैपनिंग्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बेस रहेगा। 9 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। दस बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: पर। 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 4:05 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव डायल प्रोग्राम।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।

0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

Hey listeners, good morning and welcome. आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ 6:10 और गूंजा सा है एक तारा. तारा तो चला गया है रात चली गई, अंधेरा चला गया, दिन आ चुका है, नया सवेरा है और सूरज आ चुका है और बिल्कुल खिड़की में से झांक रहा है और हमारे स्क्रीन पर भी चमक रहा है.

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं और सुप्रभात कार्यक्रम में ज्योति आपके साथ है। और चार कदम ही नहीं, हम तो हर पल हमेशा 24/7 आपके साथ हैं और यूं ही कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहते हैं। एक बात है ना कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम समस्याओं का हल ना हमारे मन के पास है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और हमारा मन हमें किसी भी ओर लेकर चला जाता है। मगर ऐसा आप भी मानते हैं क्या कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल तो हमारे मन के पास ही है? अगर मन को हम काबू कर लें तो हमें बहुत सारी चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, और जो परेशान करती हैं उनको आज आप फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि आज है संडे का दिन और 17 मई 2026 का दिन है। बहुत प्यारा सा, लवली सा, और आपने बहुत सारे टू डू लिस्ट तो बनाई होगी कि आज संडे है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग आराम कर रहे हों, मगर मैं तो काम कर रही हूँ आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का। तो बस सुप्रभात में यूं ही बने रहिए मेरे साथ, ज्योति के साथ। और आपके मन की क्या बात है आप बता सकते हैं?

जी हाँ, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, अपने मन के पीछे हम कहीं ना कहीं भागते ही रहते हैं मगर ना हमारे अंदर ना अनंत शक्तियों का भंडार है जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता होता है। और हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी रोशनी है, एक स्पार्क है जिसके बारे में भी हमें नहीं पता होता है मगर बात करके ना हमें याद आ जाता है। तो बिल्कुल हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। और जोक्स अपार्ट, संडे का दिन है, बहुत सारी लिस्ट आपने बनाई होगी, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, मगर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप एक भी काम ना करें और सिर्फ रिलैक्स करना चाहें और आपका दिल कहे कि बस मैं ना रिहा हो जाऊँ हर चीज़ से, मतलब कोई मेरे कोई ऐसी बात कोई ऐसा इमोशन मेरे मेरे मन को रोक ना पाए और मैं बस रिहा हो जाऊँ तो चलिए वो तो हम महसूस भी कर सकते हैं और उससे अपनी सोच के माध्यम से अपना भी सकते हैं। फिलहाल ये खूबसूरत सा गाना सुनिए आपके लिए, कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ एंजॉय योर संडे। और 6:26 हो चुके हैं, दिन निकल चुका है और आपके मैसेजेस हमारे साथ जुड़े हैं और नेचुरल लाइफ की एक फोटो भेजी है, बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल कुदरत तो खूबसूरत है ही, उसके बीच में जाके हमारा मन भी बहुत खूबसूरत हो जाता है और शांत।

0: अब आकाशवाणी रेनबो पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में। शौनक जी सूद गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं कि महाराज परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में और भी क्या बातें हुई, क्योंकि संतों की सभा में जब बातें होती हैं तो उनका पर्यवसान, उनकी परिणति भगवान की रसमयी लीला कथाओं में ही हुआ करती है। और ये बात भी है कि महाराज परीक्षित भी बड़े भगवत भक्त थे। बचपन में ही वो खिलौनों से खेलते समय भी श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। और सुखदेव गोस्वामी जी भी बचपन से ही, जन्म से ही भगवत परायण है। तो जब ऐसे दो संत मिलते हैं तो भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही होती है। और जिस तरह की बात शौनक जी ने कही कि जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान या श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त होने से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। तो ये जो बात शौनक जी ने कही, ये जो श्लोक था, इससे ये स्पष्ट होता है कि शौनक जी भगवद कथा की महिमा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने से और बोलने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए वो अपने हृदय की गहराई से ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि बाकी लोग तो ऐसे ही दिन गंवा रहे हैं, असली में जो जी रहे हैं वो हैं भगवान के भक्त, क्योंकि वो भगवान की कथाओं का आस्वादन करते हैं और भगवान की कथाओं के आस्वादन से उनका हृदय निर्मल होता चला जाता है और ऐसी योग्यता हासिल कर लेता है जिससे कि वो भगवत आनंद भी अनुभव कर सकते हैं और अन्य अभिलाषाएं, बाकी धन, जन, इन सब की जो

लालसाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए शौनक जी बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस भगवान की कथाएं सुननी है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, बस इतने से ही लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो ऐसा नहीं करते हैं वो भला ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो हमें अपने आसपास लोग दिखते हैं जो कि भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की कथाएं नहीं सुनते हैं, मगर दिखते हैं कि वो मनुष्य हैं और ये भी दिखते हैं कि वो जी रहे हैं, तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं शौनक जी। देखिए अगले कुछ एक श्लोकों में इतना आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं शौनक ऋषि कि वो ये कह ही रहे हैं कि तरवह किम न जीवंती भस्त्रः किम न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशुवो अपरे श्वविडवराः ओष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत कर्णपथोपेतो जातो नाम गदाग्रजः। देखिए जब आयु की बात उन्होंने कही कि देखिए जो लोग भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की कथाओं का गुणगान करते हैं, बस वही जीते हैं, उन्हीं की आयु सूर्यदेव छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये शरीर हट जाता है उनका तो वो भगवत धाम में चले जाते हैं, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है। दिखते हैं वो भी कि उनका शरीर चला गया, वो विभिन्न रोग शोक के वशीभूत हो गए, पर ऐसा होता नहीं है। समस्त रोग शोक जो भी उनके जीवन में आते हैं वो उनके कर्म की वजह से नहीं आते हैं जैसे लोगों के जीवन में आते हैं, ये तो भगवान की इच्छा से आते हैं ताकि भक्त के अंदर और अधिक उत्कंठा पैदा हो सके, भगवत प्राप्ति की वो और अधिक दीन हो सके और अधिक भगवान पर आश्रित हो सके, और दूसरी बात वो भक्ति और भक्त को रहस्य के पर्दों में भी रखना चाहते हैं। ठाकुर जी भक्ति और भक्त को रहस्य के पर्दों में रखना चाहते हैं, इसलिए भी जो भक्त हैं वो कभी बीमार होते दिखते हैं तो कभी कुछ और उनके साथ होता है। तो अब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? अरे जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी वो नर पशु शूकर कूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। तो देखिए कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है शौनक जी ने, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने स्वीकार किया था कि हम नैमिषारण्य में इतने वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते करते हमारा शरीर काला हो गया है पर मन जो है वो बड़ा ही क्लेशों से युक्त है, मन शांत नहीं है, पर हे सूत जी जब आपने भगवत कथा सुनाई तो समझ आ गया कि जीवन आज ही सार्थक हुआ है आपका संग पा करके। इसीलिए आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जीने की बात आप करते हैं तो क्या तरु नहीं जीते हैं? मनुष्य इतना क्या जिएगा जितना कि पेड़ जीते हैं? कई कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी आयु मनुष्यों से भी अधिक होती है ना? लेकिन अगर कोई भगवान की कथा सुनता नहीं है तो फिर वृक्ष की तरह वो बच के करता भी क्या है? अगर आप कहें कि अरे भाई मनुष्य बचा हुआ है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, कम से कम बचा तो है, तो भाई वृक्ष भी तो बचे हैं और लोहार की धोंकनी वो भी तो सांस लेती है और छोड़ती है, वो बहुत गहरी सांस लेती है और गहराई से छोड़ती है, इतना तो मनुष्य भी सांस नहीं ले पाता गहराई से और गहराई से छोड़ नहीं पाता हमेशा। और ग्राम्य पशु क्या सब आहार या स्त्री भोग नहीं करते हैं? सब करते हैं, लेकिन जो लोग हरि भजन नहीं करते हैं और सिर्फ आहार निद्रा आदि में अपने समय को बिताते हैं उनको शास्त्र कह रहे हैं और शौनक जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि वो नर आकार पशु हैं।

वो दिखते नर जैसे हैं, परंतु उनका स्वभाव पशु जैसा है ना। यानी अगर कोई कहे कि अरे भाई आपने कह दिया कि सूर्य देव आयु हरण कर लेते हैं, लेकिन कहां आयु हरण किया, देखो सब लोग तो जी रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में सब बचे हुए हैं, यही तो उत्तम फल है। तो उत्तर यही है कि ऐसा कहकर टाला नहीं जा सकता, ऐसा कहकर हम छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि पेड़ भी तो बचे हुए हैं। पेड़ मनुष्यों से अधिक आयु लिए हुए होते हैं, मनुष्य तो आज 50 वर्ष भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं, इतने ही मनुष्य पहले ही शरीर त्याग देते हैं। लेकिन पेड़ से ज्यादा, पशु से ज्यादा महत्वपूर्ण और दुर्लभ जन्म मनुष्य का होता है, क्योंकि वो भगवान की कथा सुनकर और भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पेड़ नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं पर हम करते नहीं हैं। तो हम शास्त्र के अनुसार हो गए नराकार पशु। और कह रहे हैं कि देखिए, यदि आप ये कहें कि ठीक है पेड़ तो बचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो सांस कहाँ लेते हैं, हम तो सांस ले रहे हैं। तो इसी अपेक्षा में पहले से ही कह दिया शौनक जी ने कि हाँ हाँ, वो जो लोहार होता है उसकी धौंकनी होती है ना, धौंकनी जिसके अंदर वो लोहे को गर्म करता है, पिघलाता है, तो इस तरह से वो सांस लेती है, तेज से हवा लेती है फिर छोड़ती है, लेती है फिर छोड़ती है, वो भी तो सांस लेती है, उल्टा मनुष्य से ज्यादा सांस लेती है। अगर कहा जाए ठीक है सांस लेती है, पर वो खाती थोड़ी ना है, उसका तो आहार नहीं है, वो खाती पीती नहीं है, मनुष्य श्रेष्ठ हो गया लोहार की धौंकनी की अपेक्षा, क्योंकि वो तो खाती पीती नहीं है और मनुष्य खाता है। तो इस बात की आशा में शौनक जी कह रहे हैं क्यों ग्राम में पशु खाते नहीं है क्या, जो गांव में पशु घूमते हैं क्या वो खाते नहीं है, या वो ना मेहनती, अर्थात क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, क्या स्त्री पुरुष का वहां भोग नहीं होता है, होता है, लेकिन क्या वो मनुष्य से अधिक उच्च हो गए, नहीं, मनुष्य जीवन ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य की अपेक्षा पशु बहुत अधिक खाते हैं, मनुष्य की अपेक्षा वो बहुत अधिक भोग भी करते हैं, तो इससे क्या वो महान हो गए, यानी जो जितना भोग करेगा वो उतना महान हो जाएगा क्या, या वो महान होगा जो हरि भजन करेगा। अगर हरि भजन विहीन है कोई व्यक्ति, तो फिर वो फिर नराकार पशु ही है। देखिए श्रीमद् महाप्रभु ने राधा भाव में विलाप करते हुए यही कहा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कहा कि बिना श्री कृष्ण संकीर्तन के हम इस युग में कभी भी अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, वो राधा भाव में कहने लगे कि सखी हे सुनो मोर हत विधि बल, मोर वपु चित्त मन सकल इंद्रिय गण कृष्ण बिना सकल विफल। भगवान ही ये बात कह रहे हैं, स्वयं भगवान ही बता रहे हैं कि ये जो मेरा नसीब है, मेरी जो किस्मत है बड़ी खराब है, क्योंकि मेरा वपु यानी मेरा शरीर, मेरा चित्त और मेरा मन और मेरी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना सारी की सारी विफल हैं, अकृतार्थ हैं। देखिए जब कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान उसके चित्त में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान बैठ सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह है और उसका नाम है चित्त। और ये जो चित्त है ये वासुदेव है, वासुदेव अर्थात बैठने का आसन, वासु का अर्थ होता है बैठना,

0: बैठने का आसन, जिसके नियंत्रक हैं ब्रह्म भगवान। तो ये वासुदेव जी जो हैं वो चित्त के अधिष्ठाता हैं, वही यहां बैठ सकते हैं। तो चित्त अगर साफ होगा, चित्त अगर भगवत भक्ति से रंजित होगा तो भगवान यहां बैठ जाते हैं। और चित्त की एक क्वालिटी है, एक गुण है कि वो जहां जैसा संग पाएगा उसमें वो वैसा ही रंग जाएगा। ये बड़ा ही खतरनाक गुण है चित्त का। तो किसी नास्तिक का संग पाएगा तो नास्तिकता के रंग में रंग जाएगा, किसी भक्त का संग पाएगा तो भक्ति के रंग में रंग जाएगा, किसी भोगी का संग पाएगा तो भोग के रंग में रंग जाएगा, तो फिर वहां भगवान बैठ नहीं पाएंगे। चित्त जब भजन करते करते निर्मल हो जाएगा तब उस चित्त में भगवान प्रेम प्रदान करेंगे और वो चित्त भगवत भाव से तदाकार हो जाएगा, प्रेम वहां आ जाएगा और भगवान वहां बैठ पाएंगे, विराजमान हो पाएंगे। इसीलिए अगर भगवान वहां नहीं बैठे तो मन, इंद्रियां और हमारा शरीर सब बेकार हो। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्णेर मधुरवाणी अमृतेरु तरंगनी, तार प्रवेश नाही जे श्रवणे, काणा कोड़ी छिद्र सम जानी हो से श्रवण, तार जन्म होइलो अकारणे। कि श्री कृष्ण की मधुरवाणी, उनकी मधुर कथाएं अमृत की तरंगनी जैसी हैं, अमृत की तरंगायित सुरध्वनि सुधा निधि जैसी है। यानी भगवान की जो वार्ता है, भगवान की कथाएं हैं, भगवान ने जो कुछ कहा है अपने भक्तों से, वो सब अमृतमय है। और जो उसे नहीं सुनता उसके लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, काणा कौड़ी छिद्र सम जानी हो से श्रवण। पहले कौड़ियों में व्यापार होता था, कौड़ियां दी जाती थी, जैसे आजकल रुपये दिए जाते हैं, ऐसे ही कौड़ियों में होता था। दो कौड़ी का व्यक्ति नहीं है तो ऐसे बोला जाता था ना, तुम्हारी औकात दो कौड़ी की नहीं है, दो कौड़ी। अब यहां तो कहा दो कौड़ी तो फिर भी कुछ है, काना कौड़ी, यानी जैसे खोटा पैसा होता है ना, वो चलता नहीं है, ऐसे ही काना कौड़ी का कोई मूल्य नहीं होता था, वो खोटा सिक्का ही होता था। तो काना कौड़ी में जो छेद हो जाता है, छेद, तो फिर उसे कोई स्वीकार नहीं करता था, काना कौड़ी है छिद्र युक्त, उसे कोई स्वीकार ही नहीं करता था। ऐसे ही हमारे कान हैं, ऐसे कान जिनमें श्री कृष्ण की मधुर वाणी नहीं गई, जो कि अमृत की तरंगनी है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर हम भगवान के भक्त होंगे तो हम श्री कृष्ण कथा सुनकर ही हो सकते हैं, तभी हमारी निष्ठा दृढ़ हो सकती है, तभी हम भगवान की महिमा को जान सकते हैं, तभी हमें भगवान से प्रेम हो सकता है, तभी हम उन्हें पाने की चाहत अपने हृदय में विकसित कर सकते हैं। कथाएं नहीं होंगी तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। इसीलिए कहा तार जन्म होइलो अकारणे, यानी जिसने भगवान की कथा ही नहीं सुनी उसका मनुष्य जन्म बेकार हो गया। ऐसे कहा, कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुण चरित सुधा सार स्वादु विनंदन, तार स्वाद जी न जाने जन्मिया ना मैलो कहने, तेरसना भीग जीवा सम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं जिसे जारी रखेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं

धारा और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक पर, जहां शौनक जी ने कहा कि जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो कैसे मनुष्य हैं भला। अगर वो कहें कि हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और स्त्री पुरुष के साथ हमारा भोग भी जारी है, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, तो क्या ये कुछ नहीं है? तो इसी के उत्तर में शौनक जी ने कहा, तर्वह किम न जीवंती भस्त्रह किम न श्वसंत्युत ना खादंती ना मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। तो आपने सुना जब उन्होंने कहा कि क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? करते हैं, मनुष्य से ज्यादा करते हैं, लेकिन उनका जीवन क्या सफल होता है? क्या उनके अंदर ऐसी योग्यता है, ऐसा शरीर उन्हें मिला है कि वो भगवान की भक्ति करके उन्हें प्राप्त कर सके? तो उत्तर है नहीं, ऐसा शरीर ही बस उन्हें नहीं मिला। तो शौनक जी ही ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जिन कानों में हरि कथा नहीं गई वो काने कौड़ी की छेद की तरह है, ऐसे व्यक्ति का जन्म अकारण हुआ। और साथ ही कह रहे हैं, कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुणचरित सुधासार स्वादु विनिंदन तार स्वाद जीना जाने जन्मिया ना मैलू कहने से रस ना भीग जीवासम। देखिये, भगवान ने सबको, हम सबको ही इंद्रियां दी हैं और मनुष्य को जो इंद्रियां दी हैं वो भगवत सेवा में लगाने के लिए दी हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। अगर इन इंद्रियों से हम ऋषिकेश भगवान की सेवा करेंगे तो उसे भक्ति कहा जाएगा। तो ये जो जिह्वा है, ये जो जीभ है, इसके दो काम हैं, एक तो स्वाद लेना और दूसरा कुछ बोलना। तो क्या बोले? कृष्ण गुणचरित, कृष्ण गुणचरित ही बोलना है इस जिह्वा से। और क्या खाना है? श्री कृष्ण का अधरामृत, यानी श्री कृष्ण को जो हमने भोग लगाया वही खाना है और कुछ नहीं पाना है, कुछ भी नहीं पाना है। अगर भोग नहीं है तो कुछ नहीं पाना है, ठाकुर जी का भोग ही पाना है, यानी हम प्रसाद भोजी हो जाएं, कृष्ण अधरामृत भोजी हो जाएं। क्योंकि श्री कृष्ण का जो अधरामृत है वो अमृत ही है और श्री कृष्ण का जो गुण चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, उसका इस रसना से पान करना, और पान जब हम इस रसना से, इस जिह्वा से, इस जीभ से करते हैं तो उसका जो स्वाद है वो अमृत के स्वाद को भी तुच्छ कर देता है। तो श्री कृष्ण का जो अधरामृत है और उनके जो गुण चरित्र हैं वो सुधासार स्वादु विनिंदन है, परंतु उसका स्वाद ही अगर किसी को नहीं पता चला, मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद, जो कि अतिशय दुर्लभ जन्म है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अरे भाई तुमने फिर जन्म क्यों लिया, जन्म नहीं लेना था तुमको क्योंकि तब तो तुम्हारी जो रसना है, तुम्हारी जो जीभ है वो क्या है? भेग जिह्वा सा, यानी वो मेंढक की जीभ की तरह है, मेंढक की जीभ की तरह। हाँ, वो कुछ भी खाता है, कुछ भी बोलता रहता है, टर टर टर टर टर कुछ भी बोलता रहता है। तो मेंढक वैसे तो पानी में छिपा रहता है और सांप का प्रिय भोजन मेंढक है, लेकिन मेंढक चूंकि छिपा रहता है तो सांप उसे खा नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो टर टर बोलता है तो सांप को पता चल जाता है कि मेंढक कहाँ छिपा हुआ है, वो उसे फट से खा लेता है। ऐसे ही काल रूपी सर्प अनाप शनाप बातचीत करने वालों को खा लेता है, काल रूपी सर्प, क्योंकि वो अपनी जीभ से असत्य और अवास्तव कथा बोलते हैं, अवास्तव यानी माइक बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो जो माया से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनकी बातें करते हैं, है ना। मृगमद नीलोत्पल

मिलने जे परिमल जे हरे तार गर्वमान हेनो कृष्ण अंग गंध जार नहीं से संबंध से ही नासा भस्त्रार समान। अभी भस्त्रार की बात कही कि भाई भस्त्रार भी तो सांस लेती है लोहार की धोंकनी, तो यहां हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो श्री कृष्ण की जो अंग गंध है, या हम श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प तुलसी चढ़ाते हैं ना, पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, इत्र से श्री कृष्ण के विग्रह को सुगंधित करते हैं, चंदन लगाते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद प्रसादी चंदन या भगवान के चरणों की तुलसी, पुष्प, माला, इन सब को हम सूंघते हैं, तो इससे हमें भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है, भगवान से प्रेम होने लगता है, जीवन सफल होने लगता है। लेकिन अगर किसी ने ये किया ही नहीं, कभी भी श्री कृष्ण के चरणों में जो तुलसी चढ़ाई गई है उसको कभी सूंघा ही नहीं, कभी श्री कृष्ण की प्रसादी माला को सूंघा ही नहीं, तो उसकी जो नाक है, ऐसे व्यक्ति की नाक है वो लोहार की धोंकनी के समान है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। हेनो कृष्ण अंग गंध जार नाही से संबंध से ही नासा भस्रार समान। यानी भगवान के संबंध से विहीन होकर के जीना ही शापित जीवन है, इससे दुखद बेकार जीवन ही कोई नहीं है। इसीलिए कहा कि कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल, तार स्पर्श जैनु स्पर्श मणि, तार स्पर्श नाही जार से जाउक छार खार से पपू लोहा सम जाने। अरे श्री कृष्ण के चरण कमल, उनके हस्त कमल कोटि चंद्र सुशीतल है, लेकिन अगर उस स्पर्श को ही नहीं पाया, अगर उस स्पर्श को ही नहीं पाया तो फिर कैसा जीवन है? यानी फिर तो ऐसा जो शरीर है वो तो लोहे के समान है, बेकार है ना, लोहे के समान। यानी भगवान किसी विग्रह को जब हम अपने हृदय से लगाते हैं तो हमारा हृदय विगलित होता है, हम बदलते चले जाते हैं, हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। तो भगवान का स्पर्श स्पर्श मणि की तरह है, पारस का पत्थर होता है ना, वो लोहे को सोना बना देता है। लेकिन जब तक हम भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय से नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा ही जो शरीर है वो लोहे और पत्थर की तरह ही कठोर बना रहेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यही यहां पर कह रहे हैं भगवान स्वयं कि अगर किसी का संबंध श्री कृष्ण से नहीं है, भगवान से नहीं है, तो सांस लेकर भी क्या फायदा, बचे रहने से भी क्या फायदा? क्योंकि हम जितना बचे रहते हैं, जितना सांस लेते हैं, जितने कर्म करते हैं, उतने ही बंधन में पड़ते चले जाते हैं, हमारे अनर्थ बढ़ते चले जाते हैं, हम पापमय कर्म करते हैं, हम पापी सोच रखते हैं, हमारे विचार मलिन हो जाते हैं। क्योंकि इस मलिनता को तो सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन ही दूर कर सकता है, भगवान से संबंध, भक्तों से संबंध ही दूर कर सकता है। अगर संबंध ही नहीं है तो सोच मलिन होगी, हमारी योजनाएं मलिन होंगी, हर जगह क्लेश कलमश ताप ही मिलेगा, सब जगह हम खुद अशांत होंगे, हमारे पास जो आएगा वो अशांत होगा, हम स्वयं अशांत होंगे तो दूसरों को शांति क्या देंगे, हम दुखी और जग को भी दुखी हम कर देंगे। तो ये तो सिर्फ एक कल्पना की बात होती है, एक भ्रम होता है कि ओ वहां हम चले जाएंगे तो सुखी होंगे, वहां चले जाएंगे तो सुखी होंगे। सब कुछ टेम्प्रेरी होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, इस दुनिया में सभी दुखी, लेकिन सुखी सिर्फ एक कृष्णदास। कृष्णदास क्यों सुखी? क्योंकि वो है निष्काम, वो है प्रेमी, वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसका सहारा है, भगवान ही उसका सहारा है, वो ये जानता है, इसलिए वो निश्चिंत है, बहुत बहुत निश्चिंत है। वो कहता ही है कि प्रभु आप पतित पावन हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पतित अधम हूं, और चूंकि आप पतित पावन हैं तो मेरी एकमात्र गति बस आप ही हैं, मैं दास हूं
आप ही मेरे स्वामी।

ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था।

जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

निधि मोहन और काल भैरव की आवाज में दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी बाहुबली और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम टुडे 17th of May 2026 और प्रोग्राम शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग दिल्ली विद योर आरजे खुशी ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6। हिस्ट्री में जहां 17 मई ने विश्व दूर संचार दिवस की शुरुआत की थी वहीं जापानी महिला जुनको ताबई ने एवरेस्ट फतेह किया था आज के दिन। साथ ही भारतीय खेलों और क्रिकेट के लिए भी ये तारीख बेहद खास है। क्यों ये जानने के लिए यू नीड टू रिमेन स्टे ओनली ऑन रेनबो स्टेशन विद योर आरजे खुशी।

0: टाइम बस स्टूडियो क्लॉक 7:15 और लीजिए सुनते हैं आकाशवाणी एट द रेट 90 का एपिसोड नंबर 23।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। November 12, 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया। बापू ने नई दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अपना संदेश उन शरणार्थियों के लिए दिया जो विभाजन के बाद कुरुक्षेत्र के शिविरों में विस्थापित होकर रह रहे थे। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर भी गांधी जी के साथ मौजूद थी। आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो ने उस स्टूडियो का नाम बापू स्टूडियो रखा है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 12 नवंबर को देश भर में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आज है 17 मई और 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसे कहते हैं हिंदी में वैश्विक उच्च रक्तचाप दिवस, जिसकी जागरूकता फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2026 में इसका विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रण करें। इसी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़

20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

यस, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपकी आरजे खुशी के साथ। और 17 मई यानी कि आज मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इस साल यानी 2026 का जो विषय है वो है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जाँच कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मूक हत्यारे को हराना हमारा मकसद है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है और ये उच्च रक्तचाप जागरूकता माह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तरों पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दूं कि ये जो उच्च रक्तचाप विश्व स्तर पर असमय जो मृत्यु हो जाती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। तो प्लीज अपनी भी जांच कराते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें।

स्टूडियो के घड़े में बज गए हैं 7:30 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR आपके आज खुशी के साथ। आज है 17 मई और 17 मई की अगर ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको बताऊं तो 1975 में जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई थी। साथ ही 1987 में क्रिकेट की दुनिया में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। सन 2010 की बात करूं तो 17 मई 2010 में भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। बीजिंग ओलंपिक्स के कांस्य विजेता विजेंद्र सिंह के अलावा दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप सुरंजॉय और जय भगवान ने अपने अपने वर्ग का फाइनल जीता था। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का जो अवार्ड है वो विजेंद्र कुमार को मिला था, जबकि मेजबान भारत ने सर्वाधिक 36 अंक लेकर टीम चैंपियनशिप भी जीती थी। गत विजेता इंग्लैंड 34 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बने रहे। साथ ही 2010 में ही देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने उसके अगले महीने कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ 2010 में ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस में ये रूल जारी कर दिया था कि नौकरी पर रहते विकलांगता को आधार बनाकर किसी भी कर्मचारी को मिलने वाले सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में उसे समान लाभ वाले पद पर रखा जा सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: 17 मई को जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें है रघुनाथ कृष्ण फड़के जो कि पद्मश्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार रहे, साथ ही के अग्रवाल जो कि भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

0: 17 मई को जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनमें है 1951 में जन्मे पंकज उदास जी, जो कि प्रसिद्ध भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे, जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए बखूबी जाने जाते थे। साथ ही 1953 में जन्मी प्रीति गांगुली, जो कि हिंदी सिनेमा की एक अभिनेत्री रही। 1897 में जन्मे धीरेन्द्र वर्मा जी, जो कि हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक रहे। साथ ही 1749 में जन्मे एडवर्ड जेनर, जो कि प्रसिद्ध कार्य चिकित्सक थे, और इनका नाम मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। छोटा सी ब्रेक के बाद बताती हूं कि अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन आज किन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मंगल भवन मंगल हारी।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग दिल्ली, आपकी आरजे खुशी के साथ। और अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में ही ये एक्ट्रेस पॉपुलर हुई हैं नुसरत बारूशा के साथ, जिनकी आपने देखी होगी सोनू की टीटू की स्वीटी से काफी ज्यादा फेमस हुई थी ये। उसके बाद इन्होंने अकेली भी की है, छत्रपति भी की है, टू टू

0: झूठी, मैं मकार में भी ये दिखी थी थोड़े से देर के लिए, राम सेतु में दिखी थी। अगर आपने राम सेतु ये मूवी नहीं देखी है ना अक्षय कुमार की और नुसरत की, तो आप प्लीज जरूर देखिए, बहुत बहुत ही औसम मूवी है। और उस मूवी में ये दिखा रहे हैं जी, देखो ये जो पवन पुत्र है ये आज भी हमारे साथ ही है, साथ ही ड्रीम गर्ल में भी आपने देखा होगा। तो अब जब इनका बर्थडे है तो इन्हीं की मूवी का ये सॉन्ग आप सभी लिसनर्स के लिए, और इनको और आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: राधा चली ओ चली ओ चली गोकुल की, राधा चली ओ चली चली चली गोकुल की।

आज है 17 मई और 17 मई के दिन आज मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकॉम डे यानी कि विश्व दूर संचार दिवस, जो कि हर साल 17 मई को मनाया जाता है। आधुनिक युग में फोन, मोबाइल और इंटरनेट ये ना लोगों की ना सबसे पहली यानी कि प्रथम आवश्यकता बन गई है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना अब बहुत मुश्किल सा लगता है। आज ये इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन में पूरी तरह एंट्रेंस मार चुके हैं। पहले जहां आपको याद है किसी से संपर्क साधने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, मतलब पूरी गली में किसी एक घर में 10 घरों में से एक घर में किसी के घर टेलीफोन होता था और फिर आवाज आती थी, हाँ भाई फलाने का फोन आया है उसके घर चलो जाओ, और फिर जाते थे फोन करते थे, इनकमिंग के चार्जेस होते थे। और ये तो बहुत दूर की बात है जब हम सोचते थे कि फॉरेन कंट्री में बैठे किसी इंसान को हम देख के फ्री में भी बात कर सकते हैं। ये तो मतलब वही है कि हर जो चीज़ है ना वो एक थॉट से शुरू होती है और आज की दुनिया में आप देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और बहुत ही आसान बना दिया है टेलीकॉम ने।

0: चीजों को। अब व्यक्ति कुछ ही सेकंड में बेहद ही आसानी से दोस्तों से, परिवार से, सगे संबंधियों से संपर्क साध सकता है। लेकिन कहीं जगह ये चीज कहीं ना कहीं ये भी होती है कि अब काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि सारे लोग साथ बैठे हैं लेकिन फिर भी अपने अपने मोबाइल में लगे हैं और एक दूसरे से अलग हैं। तो हर चीज का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। खैर, ये वाला ज्ञान मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन आज आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड टेलीकॉम डे, यानी कि हैप्पी विश्व दूर संचार दिवस, जिसकी आई एम श्योर आप सब अपने आप को ब्लेस्ड फील करते होंगे कि ये चीज आई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

ज्योति आ गई है स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 दिल के तराने गाने नए पुराने में, और तब तक आप एंजॉय कीजिए ज्योति के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: वाणी आकाशवाणी
1: Let's go crazy.

लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं और मैं हूं आपके साथ ज्योति, लेकर गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का सेकंड आवर. और आज आपका संडे रॉकिंग होने वाला है, जैसा कि अभी का पहला सॉन्ग था. और मौसम की भी बात करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास सबके लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और कहाँ जा सकते हैं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट

मौसम की बात करो तो आज 17 मई को दिल्ली का मौसम जो है वो साफ रहेगा, थोड़ा सा सनी बना हुआ है। और अगर तापमान की बात करूँ तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बढ़कर 42 डिग्री या फिर 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। वो आने वाले टाइम में तो और मौसम गर्म होगा, मगर एक अच्छी खबर भी है कि मानसून जो है वो अपने वक्त से 5 दिन पहले दस्तक दे देगा केरल में और फिर धीरे धीरे मध्य भारत से होता हुआ नॉर्थ इंडिया यानी कि हम तक दिल्ली NCR तक भी पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। और आपको क्या लगता है कि आज का मौसम जैसा रहने वाला है और अगर हम बारिश का गाना सुनेंगे तो क्या बारिश आ जाएगी? क्या पता आ जाए। और अगर नहीं आएगी तो भी ये कूल सा गाना सुन के हमारा मन तो कूल कूल हो ही सकता है। आज का संडे एंजॉय कीजिए। मैं हूँ ज्योति आपके साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

संडे का दिन सनी रहने वाला है, इसलिए मैंने आपको एक कूल सा गाना सुना दिया ताकि आपका संडे मस्त हो जाए। और क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं बताती हूँ आपको क्या करना है कि आपको टाइम से अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है, क्योंकि इसके लिए प्रोसेस जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। 2026-2027 असेसमेंट ईयर जो है उसके लिए ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 फाइल करने की प्रोसेस फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें आप एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा जो है वो ई फाइलिंग पोर्टल पर अवेलेबल करा दी गई है। और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए ITR 1 भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए ITR 4 भरने की तारीख 31 अगस्त है। तो ये दो डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, उसके बाद पेनल्टी लगेगी और लेट फीस, लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑफकोर्स फाइन भी लगता है। तो इसीलिए 31 जुलाई फॉर ITR 1 एंड 31 अगस्त फॉर ITR 4, इन दोनों डेट्स का ध्यान रखिए और टाइम पर ये अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कीजिए। और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विद मी ज्योति 8:12 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और बहुत सारी और काम की इन्फॉर्मेशन है यहीं मिलेगी आपको।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। अब जो बताने जा रही हूँ ना, वो सुनकर हमारे बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी समर कैंप 2026 होने वाला है बच्चों के लिए, और अगर आपको भी तारामंडल और हमारा जो ये आसमान है, यूनिवर्स है, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है ना, और आप बहुत कुछ सीखना जानना चाहते हो खगोल विज्ञान के बारे में, उसको जानना समझना चाहते हो, तो वो भी मज़ेदार अंदाज में, तो आपको इस समर कैंप में ज़रूर जाना चाहिए। और 21 से लेकर 24 मई तक इस कैंप में क्लास 5th से लेकर क्लास 9th तक के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, और एक्सपर्ट्स के साथ आप इंटरैक्टिव गैलरी की भी सैर करेंगे वहां पर। और वर्कशॉप में पहले 3 दिन जो है वो सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक होगी, और इसके लिए आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसके लिए आप लिंक डिमांड कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी है, वो मैं आपको बताती हूँ, nehruplanetarium@gmail.com। इस पर आप मेल करके रजिस्ट्रेशन का लिंक ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको डेट्स बताई हैं, 21 मई से लेकर 24 मई तक क्लास 5th से लेकर क्लास 9th तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप भी टेलीस्कोप हैंडलिंग सीखना चाहते हैं, स्काई ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बहुत सारे कोर एस्ट्रोनॉमी के फंडामेंटल्स सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस समर कैंप में जाएं, और जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई है उसके ज़रिए आप लिंक डिमांड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का, जो कि मस्ट है। फिर से बता देती हूँ, nehruplanetarium@gmail.com। सो डोंट मिस दिस चांस, 21 से लेकर आपके पास ये मौका है, 21 मई से लेकर 24 मई तक।

ये जो एस्ट्रोनॉमी समर कैंप 2026 होने वाला है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। वो ये है कि इट्स एन ऑफिशियल कैंप जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है डायरेक्टली बाय द प्लानिटेरियम एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए इसमें मिडिल स्कूल के बच्चों को जो है वो टारगेट किया गया है। और जब आप टेलीस्कोप से आसमान को देखेंगे, सोलर सिस्टम को देखेंगे, यूनिवर्स को देखेंगे, तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी सोच सकते हैं, इमेजिनेशन तो आप कितना भी कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही रजिस्ट्रेशन होंगे, और आप ऑफिशियल QR कोड्स के माध्यम से भी उनको स्कैन करके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे, उतनी जल्दी आपकी सीट रिजर्व होगी, श्योर होगा, और आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे 21 मई से लेकर 24 मई तक।

0: और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

कुछ लोग मदहोश हैं, कुछ लोग बेहोश हैं और हमें अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गलत सही तो हमारे आसपास होता ही रहता है। कभी लाइफ कुछ गलत कर देती है, कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, और कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनकी मंशा सही नहीं होती है, और फिर उसका भुगतान जो है वो बच्चों को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को करना पड़ता है। तो हमारे दिल्ली NCR में वैसे तो हम जानते हैं कि काफ़ी जगह पर कैमरेज हैं।

और सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, मगर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे टाइम टाइम पर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और नई नई जगहों को लोकेट कर वहां पर ये सारी सुविधाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी नोएडा को सेफ सिटी बनाने का जो एक प्रोजेक्ट था जो काफी टाइम से पाइपलाइन में था, उसको अब जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है, और शहर में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 561 लोकेशंस को लोकेट किया गया है, मार्क किया गया है, और वहां पर 1949 आधुनिक नाइट विजन और फेस डिटेक्शन सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे। और ये कैमरेज जो हैं, ये जो कैमराज हैं, ये चलती गाड़ी की नंबर प्लेट भी पढ़ने में सक्षम हैं, और ऐसे 100 मुख्य चौराहों और रास्तों पर ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्टर कैमरेज भी लगाए जाएंगे, और जैसे कि अगर तेज गाड़ी कोई दौड़ रही है फिर भी उसको आसानी से स्कैन करके उसकी नंबर प्लेट को उसको नंबर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पैनिक बटन है जो इमरजेंसी टाइम पर काम आएगा। ये बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है, और 147 जगहों को चिन्हित किया गया है इसके लिए, और यहाँ पर इमरजेंसी पैनिक बटन्स लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी खतरे के वक्त इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को इसका अलर्ट चला जाएगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरा प्रोसेस है, इसको जो ये सेफ सिटी का पहल जो हिस्सा है, इन सभी का जो कनेक्शन होगा, ये सभी कैमराज जो हैं वो सीधे जुड़े होंगे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, ये डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। तो उस पर क्या होगा कि जैसे ही कोई पैनिक बटन प्रेस करता है तो इमीडिएट उस पर एक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं सबकी सुविधाओं के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, मगर बिसाइड्स दैट, इन सब के अलावा भी हमको अपनी सुरक्षा का खुद भी ध्यान रखना है, खुद भी अलर्ट रहना है, और अगर हमारे आसपास कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी भी मदद करनी है।

यस, ये है आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ 8:45 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमें अपनी सुरक्षा और अपने साथ वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए एंड सुपर अलर्ट और अवेयर रहना चाहिए। और एक ऐसा ही और मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, और मैं बात कर रही हूँ डेंगू की। कल हमने राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया था, और इसका मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना, मगर इसके बावजूद भी लापरवाहियां होती हैं। और जहां पहले डेंगू की बीमारी सिर्फ बरसात के मौसम में लोगों के लिए खतरा बनती थी, मगर अब यह हर मौसम में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो पहले जहां 2 सालों के अंतराल पर कभी इसका कोई गंभीर रूप होता था, वहां अब 1 साल के अंतराल में ही इसका हमें काफी ऐसा विकराल रूप हम कह सकते हैं सामने आ रहा है। और यह सिर्फ एक मौसम का रोग माना जाता था, मगर अब यह साल भर की जो है वो चुनौती बन गया है। सो थ्रू आउट द ईयर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपने घर में पानी जमा ना होने दें, और कूलर हो गया या फिर कोई गमले हो गए, पौधे हो गए, या कोई भी ऐसा खाली वैसल हो गया जो हम रख देते हैं, सो ये बहुत जरूरी है। पहले तो ये सिर्फ अगस्त से नवंबर तक ही लिमिटेड रहता था, मगर अब जनवरी, फरवरी और मार्च में भी इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो इसलिए एक चिंता का विषय है। और पूरा साल भर जैसे मैंने कहा कि हम इससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो पानी जमा ना होने दें, और दूसरी बात, अगर इन केस आपको हल्का सा भी फीवर फील होता है, सो डोंट टेक इट लाइटली, और आप उसको तुरंत उसकी जांच करवाइए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब ये पूरा साल ही हम इससे रिस्क में हैं। तो बुखार को नॉर्मल ना समझें, अपने अगर आपके आसपास कहीं मच्छर हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी वजह से बुखार आया है, तो प्लीज़ डू गेट इट चेक। हालांकि इन मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से 15 विशेष टीमें गठित की हैं, जो घर घर जाकर सर्वे करेंगी, लार्वा की जांच करेंगी, फॉगिंग भी करेंगी और लोगों को जागरूक भी करेंगी, मगर उसके बावजूद भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो ही जाती है। सो बस आपको ये बताने का मकसद यही था कि आप अलर्ट हो जाएं। अभी बारिश का मौसम प्रॉपर आने वाला है, जैसे मैंने कहा मॉनसून भी जल्दी आ जाएगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अपने घर वालों की सेफ्टी का जिम्मेदारी आपकी है।

अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मौका है। आरबीआई की वैकेंसी निकली है फॉर ग्रेड बी, और इसमें 60 वैकेंसीज हैं, 60 पोजीशंस हैं जिसको भरने के लिए भर्ती चल रही है, और इसकी लास्ट डेट नोट कर लीजिए 20 मई। जी हाँ, आज 17 मई हो चुकी है एंड ओनली 3 डेज आर लेफ्ट, तो 20 मई इसकी जो है लास्ट डेट है। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी को कम्प्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, और वो किसी भी कारण बस पहले नहीं फॉर्म भर पाए थे, याद नहीं रहा, भूल गए, पता नहीं था कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है opportunities.rbi.org.in पर जाकर भर सकते हैं 20 मई तक। मैं वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट रिपीट कर रही हूं, opportunities.rbi.org.in पर जाकर आप इसे भर सकते हैं। और इस इन पोजिशन के लिए आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और इसके अलावा आपकी जो एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। आप कितने साल के हो? 21 से 30 साल के बीच में हो, सो डोंट मिस दिस चांस। 20 मई इसकी आखिरी तारीख है और ये एक अच्छा मौका है, तो तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और इस मौके का फायदा उठाइए।

8:57 बाय द स्टूडियो क्लॉक, 8:56 बोल रही थी मैं, पर बोलते बोलते 8:57 हो गए और मेरे जाने का समय जो है वो बहुत नज़दीक है। मगर चलते चलते बता दूं कि FM रेनबो पर आज संडे आपका कैसे हैपनिंग हो सकता है। सो 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगी आज एक खुशी लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने, और उसके बाद 10:05 से हरप्रीत कौर के साथ आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आवर। 11 बजे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 गोपाल भट्ट के साथ। 12:05 से हरप्रीत फिर आपके साथ होंगे लेकर प्ले इट कूल। 1:05 पे गोपाल भट्ट होंगे आपके साथ लेकर मेरा वाला सॉन्ग। 2 बजे आप सुनेंगे आशियाना ज्योतिका सिंह के साथ, और उसके बाद भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। रेडियो डॉक्टर का आज का स्पेशल शो है 3 बजे, जिसमें आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर एंड आयुर्वेद। इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं CGHS न्यू दिल्ली। और 4:05 से ज्योतिका फिर आपके साथ जुड़ेंगे लेकर अल्फा जैन, और 5:05 पे सिटी की सारी हलचल के साथ शायद आपके साथ होंगे। फिलहाल मैं चलती हूं, मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर, तब तक बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यस, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने जो शुरू हो गया है। और बेनी देओल के लास्ट गाने में उन्होंने बोला था आई वोंट लेट यू गो, और हम भी आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि गानों का सिलसिला बैक टू बैक शुरू होने वाला है रेनबो स्टेशन 102.6 पर। साथ ही रेनबो की ओल्ड डायरी से आपके लिए लेकर आऊंगी मैं गोल्डन वाले सॉन्ग 7:30, 9:30 और 10:15। तो बने रहिए रेनबो स्टेशन पर आरजे खुशी के साथ।

0: ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੂ?
1: खाते खाते भी खाने सुनने का मजा ही कुछ और होता है। टाइम बस स्टूडियो क्लॉक 15 मिनट्स पास 9। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रेनबो की ओल्ड डायरी से आपके लिए गोल्डन वाला सॉन्ग लेकर आऊंगी, तो ये गाना आप सभी लिसनर्स के लिए लेकर आई हूँ मैं, फिल्म आनंद से मन्ना डे की आवाज में।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद। शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: से बचाएं। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: FM रेनबो आकाशवाणी पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। हरप्रीत कौर आने वाली है स्टूडियो में विद अ प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम जो आप सुनेंगे 10:05 से 11 बजे तक। 11 बजे से आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जिसमें आज का विषय रहेगा पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। 12:05 से 1 बजे तक आप सुनेंगे प्ले इट कूल हरप्रीत के साथ, विच इज अगेन अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम। 1:05 से 2 बजे तक आप सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग जहां आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स, ये आप रिक्वेस्ट करेंगे आज गोपाल भट्ट के साथ। और 2 से 3 आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना ज्योतिका के साथ। और रेनबो पर ये सिलसिला यूं ही कंटिन्यू।

आरजे खुशी यानी मेरे जाने का वक्त आ गया, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि असफलता ये बताती है कि जो प्रयास है ना वो पूरे मन से नहीं किया गया। तो सफल होने के लिए ना प्रयास पूरे मन से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

0: प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: So that was a beautiful track written by Majru Sultanpuri from the movie Shagird. And friends, another trivia here for you. You know, one of the most memorable broadcasts in the history of radio in India remains Melville DeMello's marathon 7-hour live radio commentary on the funeral procession of Mahatma Gandhi on January 31, 1948. His baritone captured the grief of an entire nation as he simply described the scenes unfolding in front of him. I'm sure you have your favorite voices on radio too. Why don't you let us know? And you have the message number. And that number, please let us know about your favorite voice, 9868107070. As I'll be back with the show Play It Cool in a short while from now, and maybe then I can take those messages. But for the moment, I'm going for a short break.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: Friends, with this, it's almost time for me to wrap up this edition of Matchless Music Hour. I hope you enjoyed this musical joyride with me. I'm leaving you with the last track of this, you know, this particular show, and this is All I Have to Do Is Dream by the Everly Brothers. Enjoy this number, and I'll see you very soon at 12 with Play It Cool. Take care. Bye bye.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन

0: डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरूग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate.
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था

0: जनगणना में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं उसका उल्लेख किया है। आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। ये हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही, वायुर्वै समष्टि है। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
0: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं। डॉक्टर प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, धन्यवाद नीलम जी।
0: और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी, आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
3: धन्यवाद।
0: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं, पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है, और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रबीर जी आपसे।
2: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
0: जी,
2: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है। और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने हैं। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं। और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रतिक्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
0: जी।
2: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं, तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
0: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं।

0: यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों हैं? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टरबाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं?
1: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहाँ से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो हैं उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अनामनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है, और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने एमिनियस किया, और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
0: जी।
1: पवन ऊर्जा का जल्दी फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
0: जी।
1: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था, और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
0: जी।
1: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
0: जी,
1: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
0: जी,
1: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
0: जी।
1: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
0: जी।
1: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं, और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
0: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे, अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
1: आई थिंक मेरे हिसाब से हवा के साथ साथ
0: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना,
2: हवा के साथ साथ,

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद के जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के बनाते हैं
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बोलते हैं, उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
0: जी,
1: वो हर जगह पे काम करता है।
0: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज हम देख प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
0: जी,
1: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोंस्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था, फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
0: जी,
1: मतलब इट इज ए

0: मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NTPC है, NHPC है, SJVN है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
1: जी,
0: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है
1: जी,
0: जो हमारे डिस्कम को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
1: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
0: बिल्कुल
1: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है, कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी, या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
0: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है, जिसको हम पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, CWET के नाम से शुरू हुआ था
1: जी
0: सन 2000 में। अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो चेन्नई में स्थित है
1: जी।
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहां पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है। और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर्स है, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक
1: जी।
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का
1: जी,
0: और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा।
1: बट
0: ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे, उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है,
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता
1: जहाँ हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है, और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो आसपास, खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं
1: जी।
0: जहाँ पे कंटिन्यूस विंड होता है आप वहाँ पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं, तो वो एक प्राइमरी साइन है
1: जी,
0: किसी भी
1: इंजीनियर हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है जी। बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
0: तो हम पवन की बातें करते हैं, तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है
1: जी।
0: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो चार महीना होता है
1: जी
0: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
1: वाह,
0: तो सावन का महीना
1: जी, सावन का महीना।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है। क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की, और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रवीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है।
0: हुँ.
1: क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक, लगभग जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है, उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है
0: जी।
1: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी

0: मिलेगा।
1: जी
0: और हम जो है इसको और इसी विषय पे इसी की प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया
1: जी।
0: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा
1: जी,
0: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं। और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें। ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, कैसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है। ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
1: जी
0: बिडिंग का
1: जी
0: एक तरीका अपनाया जा रहा है जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं
1: जी।
0: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट
0: किया है और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा, वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है। वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का, जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता है,
0: रोजगार
1: इसकी
0: मिलता
1: से।
0: रहा है। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं, चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी।
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है, तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है
1: जी।
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रबीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्कियां अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए
1: जी।
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना, बट हाँ बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है
1: जी।
2: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
2: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
2: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इन

0: है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी,
0: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
0: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मॉनसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
1: जी।
0: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है, इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
0: अभी 1-2 स्टेट में और अभी काम चल रहा है जैसे कि उड़ीसा, तो वहां पे भी शायद अगले 1-2 साल में आपको दिखेगा कि वहां पे भी लगा हुआ है
1: जी।
0: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
0: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
0: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकेंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड्स है, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
1: जी।
0: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।
0: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है, हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के
1: अलग
0: कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं
1: जी।
0: बट ऐसा नहीं कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
1: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपने ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाए?
0: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी, ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए। तो ये संभव है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं।
1: जी, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, इसके बाद हमारी बातचीत जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा।
0: आपने देश के बारे में पूछा है, पवन के बारे में पूछा है, तो पवन चले पुरबाई
1: जी।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, इससे हमारी जानकारी बढ़ रही है पवन ऊर्जा को लेकर, साथ ही कुछ तकनीकी पहलू भी एकदम आम शब्दों में साधारण भाषा में हम समझ पा रहे हैं। पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हमारे साथ हैं, उद्यमी हैं और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से आप जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
1: ये एक संस्था है
0: जी,
1: जो जितने भी हमारे टरबाइन के निर्माता हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन या एक निकालते हैं
0: जी।
1: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर

0: लेक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: मैं आपको जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो है कंपोनेंट और ये सब है
1: जी।
0: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
1: जी।
0: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग की और इन सब के ऊपर नजर रखता है
1: जी।
0: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
1: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
0: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक द्विधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
1: जी,
0: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
1: जी,
0: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है ताकि दोनों ही टर्बाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
1: जी।
0: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारे मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती हैं वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता है
1: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
0: हाँ देखिए, हर टरबाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टर्बाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती रहे।
0: यही नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
1: जी।
0: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है जो हमारी तारे हैं जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता है
1: जी। आपसे जानना चाहूंगी प्रवीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाईलाइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो जहां पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनेजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं
1: जी।
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा, होटल्स रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी
1: जी,
2: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये। जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा, हम जो वर्ल्ड क्लास

0: स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं
1: जी।
0: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं। अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है
1: जी,
0: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है
1: जी।
0: फिर वो लिस्ट बनती है, तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं। तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी,
0: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं
1: जी,
0: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं
1: जी,
0: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता
1: जी।
0: है, तो वहां पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी करा जा सकता है
1: जी।
0: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहां पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं जहां पे वो पवन चक्की खड़ा है, और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरा उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है, तो वहाँ से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको
1: जी। लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, समझने के लिए या रिसर्चर्स हैं,
0: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है टिप हाइट तक आप मान के चलिए
1: जी,
0: उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता। मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहां से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहाँ पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे
1: जी। और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है,
0: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हैजर्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो, क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है
1: जी,
0: तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी रहता है
1: जी।
0: तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहाँ पे लोग जाए उसको छुए,
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है, और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
0: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से
1: जी।
0: कुछ पुराने टर्बाइन्स है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं, और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने के जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी
1: जी।
0: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं
1: जी।
0: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यूनियम मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रिइंफोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है, 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट
1: जी,
0: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है, लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा,
1: बिल्कुल,
0: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है, तो सबसे कम कार्बन

0: पवन ऊर्जा का,
1: पवन ऊर्जा का होता है
0: जी।
1: तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
0: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय की अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
0: जी
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते
0: जी। तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है जी। हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। तो चलते चलते ओम जी आपकी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं के लिए,
2: पंछी नदिया पवन के झोंके
0: जी,
2: ये एक अच्छा गाना हो सकता है।
0: बिल्कुल, ये गाना बहुत अच्छा है, हमारे कार्यक्रम की थीम से मैच कर रहा है। पवन के झोंके जो है बहुत ही जादू का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: Okay, friends, it's now time for me to pause for a while. I'll be right back. You stay tuned to Akashwani Rainbow.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आय हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: Hey friends, now it's almost time for me to wrap up this edition of Play It Cool, and I'm leaving you with the last track of the show. This one is Garden of Eden by Lady Gaga. Enjoy the number and do stick around for a lot more only on Akashwani Rainbow. This is me, Harpreet Kaur, signing off. Bye-bye.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब

ने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरूआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की वाणी आकाशवाणी
1: दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। जेट की दोपहर है दोस्तों, 1:05 बाद स्टूडियो क्लॉक और ये वो समय है जब हम आपसे मुखातिब होते हैं लेकर आप ही के लिए आप ही का शो मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। और मुझ तक पहुंचना बहुत ही आसान है, कोई भी नगमा कोई भी गीत कोई भी ट्रैक अगर आप सुनना चाहते हैं तो बंदा एकदम लाइव इस समय स्टूडियो में हाजिर है आपकी खिदमत में। आपको बस मुझे एक व्हाट्सएप करना है, एक व्हाट्सएप दूरी है हमारे बीच और वो दूरी भी हम पाटते हैं 9868107070 पर। मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कहां से आप मैसेज भेज रहे हैं मुझे बताइए और रेडियो करो में आपसे वादा करता है कि आप तक वो ट्रैक हम पहुंचाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया तो रेडियो करोमियों करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज्यादा, आज कोशिश करके देखिए। बहरहाल शो की शुरुआत कर दें जुबिन ऑडियाल साहब की आवाज में इस बेहतरीन ट्रैक के साथ। और साथ ही साथ ये भी याद दिला दूं कि आप और मेरे बीच सिर्फ एक व्हाट्सएप की दूरी है, अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया तो आज ट्राई करके देखिए 9868107070 पर।

102.6 MHz पर आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आप ही की पसंद के ट्रैक एकदम लाइव। इस समय शो पर मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सगा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। आप सभी को पहली पर नमस्कार जी, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए जो मेरे पास पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नामची सिक्किम से हमें आनंद जी ने मैसेज लिखा है, साथ ही साथ मानिका ने इन्हें सुनना है फिल्म कोई आपसा का ट्रैक। तो चलिए हम जरूर कोशिश करेंगे, दिस इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे, तो हम इस ट्रैक को जरूर बजाएंगे। और साथ ही साथ ये जो मैसेज हमारे पास पहुंचा है इसे भी हम शामिल करते हैं। इस्लाम सलमानी साहब है बदायूं से, इन्होंने हमें मैसेज लिखा। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है पुणे से, जीविका है, ऋषिकेश है, अनिकेत है, सविता और अशोक है, कुमार गली श्रीरामपुर से इन्होंने हमको मैसेज दिया है। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर से हमारे पास प्रार्थी जयप्रकाश जी हैं, इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। थैंक यू सो मच ये मैसेज भेजने के लिए। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस ट्रैक जयप्रकाश जी, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं इसे अगर बजा सका तो। इसके साथ साथ रेशमा जी हैं अलीगढ़ से, सुनीता हमारे साथ शालीमार बाग से जुड़ी हैं, और अमरबीर सिंह साहब हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं और ये सुनना चाहते हैं आशिक की फिल्म का ट्रैक। आशिक नहीं है, आशिक ही है अमरबीर जी। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इस ट्रैक को बजाने की अगर मेरे पास सिमिलर रिक्वेस्ट आती है और भी बहुत सारे लिसनर्स थे, लेकिन अगर आपकी और कोई चॉइस हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास आया है इला और सौरभ का, और ये सुनना चाहते हैं काश के हम कभी हाँ कभी ना का ट्रैक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक आई शुड से दोस्तों। और ये सोनीपत से हमारे पास मैसेज है विजय शंकर साहब का, और ये भी ट्रैक सुनना चाहते हैं कुमार सानू साहब की आवाज़ में। तो चलिए बहरहाल ये बेहतरीन ट्रैक आपके लिए मैं निकाल रहा हूँ, और अगर आप भी अपनी पसंद का कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो मुझ तक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं एकदम लाइव। इस समय कंप्यूटर के स्क्रीन पर टकटकी लगाए आपके मैसेजेस को मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हें निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ, और नए मैसेजेस का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। 9868107070 मेरा नंबर है दोस्तों, एकदम लाइव इस समय आपके साथ हूँ। और अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया है तो वंस अगेन, रेडियो का रोमियो करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज़्यादा।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आज गोपाल। दोस्तों, घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:18, यानी कि आपकी हमारी भाषा में जेठ की दोपहरी के 1:15 हो चुका है। संडे का दिन है दोस्तों, और हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं आपकी पसंद के ट्रैक्स। बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास पहुँच रहे हैं, और मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में आशिकी 1 का ये ट्रैक। मैंने लोगों से पूछा कि भाई अगर कोई और भी इस ट्रैक को सुनना चाहता है तो मुझे ज़रूर बताए, और मेरे पास अब जो इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट है वो आना शुरू हो चुके हैं। आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम, इफ़ आई रियली गेट कंसिडरेबल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू तो मैं ज़रूर इस ट्रैक को यहाँ पर प्ले करूँगा। और आपको मैं दे रहा हूँ लगभग 60 सेकेंड्स। जी हाँ, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर मैं जाऊँगा और इस ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, और इफ आई रियली गेट मोर रिक्वेस्ट फॉर दिस सॉन्ग आई सर्टनली प्ले दिस, सो डोंट गो, स्टे विद अस, आई बैक इन अ शॉर्ट वाइल आफ्टर दिस ब्यूटीफुल कमर्शियल ब्रेक।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक बज के 20 मिनट बाद स्टूडियो क्लॉक और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी पसंद के गीत की, आप ही के शो पर जिसे आप कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं हूँ आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। और शुरुआत करते हैं मैसेजेस को शामिल करने की। ये मैसेज हमारे पास चेतन कुमार साहब का आया है गया बिहार से, कह रहे कि भैया मैं दुनिया भुला दूंगा, सुना दीजिए वाला ट्रैक आशिक FM से। साथ ही साथ ये वाला मैसेज हमारे पास आया है एल्यूमिनी का और ये दीमापुर नागालैंड से हमें मैसेज भेज रही हैं। कोई मिल गया फिल्म का ट्रैक सुनना चाहती है, जरूर कोशिश करेंगे अगर हम इस ट्रैक को प्ले कर पाए तो। अररिया बिहार से सरफराज भाई का, प्रेमचंद जी का, प्रकाश गोगिया जी का, मनोहर लाल जी का, साथ ही साथ फारूक अली खान साहब का हमारे पास मैसेज आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है याकूब अंसारी साहब का चंडीगढ़ से, सैयारा फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं, जरूर कोशिश करेंगे। अनीता वर्मा दिल्ली से हमें मैसेज लिख रही हैं, उंगली पकड़ के चलना तूने सिखाया था, दिलबरो का ये ट्रैक सुनना चाहती हैं अनीता। और ये मैसेज हमारे पास वीरेंद्र वर्मा जी का, हीना फिल्म का कोई भी गाना ये सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से। एक और मैसेज हमारे पास है पारस का और ये राता लंबिया सुनना चाहते हैं शेर शाह मूवी का। दोस्तों सोनू हमें मेरठ सदर बाजार से मैसेज लिख रहे हैं और ये भी सुनना चाहते हैं

मेरे लिए मुश्किल आता है उसको पढ़ना, सो प्लीज बियर विद मी एट टाइम्स, मैं दुनिया भुला दूंगा ये ट्रैक जो है। इसकी एक और रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है, दोस्ती का रिश्ता पुराना है कह रही है डोली, और इन्हें ये गाना पसंद

आज अभी हमने बजाया था, वी आर लिस्निंग योर ट्रैक्स, कह रहे हैं हमें अंबर बीर सिंह जी गुरुग्राम से, और मैं दुनिया भुला दूंगा सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ ये मैसेज हमारे पास भजन लाल जी का आया है और ये भी सुनना चाहते हैं, आशिकी फिल्म का ट्रैक, एनिवर्सरी है आज भाई, और संजीव यादव जी इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं, तो मगर साथ देने का वादा करो तो ज़रूर कोशिश करेंगे संजीव भाई। लेकिन आपको साथ ही साथ हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी एनिवर्सरी की। मैं सॉन्ग चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई नीड टू सी कि कितने सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंचते हैं सिमिलर ट्रैक्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है हम उन रिक्वेस्ट को यहाँ पर एंटरटेन कर सके, वही हमारी कोशिश भी होती है। खुशी हमारे साथ कर्नाटका से जुड़ी है, ना कजरे की धार जो ट्रैक है वो सुनना चाहती है। कोई आपसा ट्रैक हमने बजाया मनिका के लिए सिक्किम से, उन्होंने हमें थैंक यू बोला है, तो बिल्कुल जी थैंक यू आपको भी हमें मैसेज भेजने के लिए। इसके साथ साथ सिर्फ तुम का गाना सुनना चाहते हैं बहुत सारे लोग। सुनीता नेगी 16 इन्होंने हिमाचल से हमें मैसेज लिखा है। इसके साथ साथ सुनीता लोकेश ने अहमदाबाद से हमें मैसेज लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज। और हरकिरण सिंह जी हैं फरुखाबाद से, इन्होंने हमें मैसेज लिखा है, और ये पहला मैसेज कहते हैं कि इन्होंने लिखा है, और ये है हमारे पास अनिल कुमार साहब का गुरुग्राम से, थैंक यू सो मच हमें मैसेज भेजने के लिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपकी पसंद के ट्रैक्स बजा सकूँ यहाँ पर, और साथ ही साथ उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मैं दुनिया भुला दूंगा आशिकी फिल्म के इस ट्रैक को अपना थम्स अप दिया। निकल चुका है आप सभी के लिए कुमार सानू साहब की आवाज़ में, तो वो सभी लोग जो कुमार सानू साहब की आवाज़ में भी ट्रैक सुनना चाहते थे उन सब की रिक्वेस्ट भी यहाँ पर पूरी हो रही है। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे साथ मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप भी की पसंद के ट्रैक्स को बजाते हैं। 9868107070 नंबर है दोस्तों, जिसके द्वारा आपके दिल की बात पहुंचती है मेरे दिल तक और मेरे दिल से उन सब के दिल तक जो दिल से सुनते हैं द स्टेशन ऑफ द नेशन। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:30, यानी कि आपकी हमारी भाषा में संडे दोपहर के 1:30 बज चुके हैं दोस्तों। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच रहे हैं। रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है राज फिल्म के ट्रैक को सुनने की। अनुजा शर्मा मेरठ से, इन्होंने ये रिक्वेस्ट हमें भेजी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, तो हम जरूर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम इस ट्रैक को बजाएं। गुड्डू जी हैं हमारे साथ उज्जैन से, ये भी जुड़े और ट्रैक सुनना चाहते हैं। अमन और दीपांशु हैं, सचिन और जयराम जी हैं उत्तम नगर से, ये भी सुनना चाहते हैं ट्रैक। मनप्रीत हमारे साथ जुड़ी और नोएडा से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे आशिकी की, जो ट्रैक हम ऑलरेडी यहाँ पर प्ले कर चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हमें अलग अलग सॉन्ग की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मनीषा है, राम बाबू है, ये राम जाने का टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं। कविता है उत्तराखंड से और कह रही है कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, सुनना चाहती हैं मर्डर फिल्म का ट्रैक। नदिया के पार का कोई ट्रैक सुनाइए। मीत नगर से लाल जी हमारे साथ जुड़े। इसके साथ साथ राजेश भल्ला जी कह रहे हैं DDLG का कोई गाना सुनाइए ना। हिना मूवी का ट्रैक सुनना चाहते हैं। सुनीता अहमदाबाद से, बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास हिना जो मूवी है उसके लिए भी आ रही है। कोई आपसा जो अभी हमने ट्रैक बजाया उसके लिए हमें थैंक्स कर रहे हैं हरकिरण सिंह जी। इसके साथ साथ डियर आरजे आई एम विद यू रणबीर जी हैं, और साथ ही साथ रघुवीर सिंह जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं और ये भी हिना फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं। वेरी सरप्राइजिंगली मेरे पास हिना फिल्म के ट्रैक की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट पहुंच रही है दोस्तों। हिना फिल्म की एक और रिक्वेस्ट हमारे पास मथुरा से आई है वीरेंद्र जी की, और हिना का एक और ट्रैक सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है अंबीर साहब का। आई एम नॉट श्योर कि ये सब लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया लेट्स हैव अ कंटिन्यूस रिक्वेस्ट फॉर दिस ट्रैक, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। बहरहाल मेरे पास दो सॉन्ग्स की यहाँ पर रिक्वेस्ट है दोस्तों। एक है जो सुनना चाहते हैं फिल्म राज से, और वो मैं बजाने वाला हूँ अलका याग्निक, तुम अगर सामने आ भी जाओ। इसके साथ साथ हिना फिल्म का अगर आप ट्रैक सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। तो आई एम हैविंग टू ऑप्शंस, आई एम गिविंग दोज टू ऑप्शन टू यू, और उनमें से एक गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगा। या तो राज फिल्म का ट्रैक होगा या फिर हिना फिल्म का। कौन से फिल्म का ट्रैक आप सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं फिलहाल जा रहा हूं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। जब हम बोलते हैं ना छोटे से कमर्शियल ब्रेक, आई मीन इट, सिर्फ 90 सेकेंड में वापस लौटूंगा। कहीं जाएगा नहीं, रेडी किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।
1: विकसित

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं वापस पहुंच चुका हूं आपके पास लेकर आप ही का शो जिसे आप कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग दोस्तों। और बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंच रही हैं। हिना और राज के बीच में बहुत जबरदस्त टक्कर। शालू में शादीपुर से कह रही है राज का गाना बजाइए, और हिना जो

सुनना चाहते हैं हिना फिल्म का ट्रैक। तो चलिए यहाँ पर हिना ने बाजी मार लिया, लेकिन अगर फिर भी आप राज फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं तो भी मुझे मैसेज करके जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है अगला वाला गाना राज फिल्म का ही हो। बहरहाल हिना फिल्म का ये ट्रैक लता दी की आवाज में आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 9868107070 मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अगले 25 मिनट आपके पास रहेगा, एकदम लाइव स्टूडियो में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आप कोई भी गाना अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया तो आज करके देखिए। रेडियो का रोमियो करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज़्यादा।

ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो और आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर हम आप ही की पसंद के ट्रैक्स बजाते हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर सके आप ही की पसंद के ट्रैक्स के साथ। और बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास लगातार पहुंच रही है, और अब जो टाइम मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है अरिजीत सिंह साहब की आवाज़ में किसी ट्रैक का और राज फिल्म का ट्रैक। इन दोनों में से आप अगर कोई एक चुनना चाहे तो कौन सा चुनना चाहेंगे मुझे बताइए। राज फिल्म का तुम अगर सामने आ भी जाओ, और साथ ही साथ अरिजीत फिल्म का जो ट्रैक मैं आपके लिए बजा सकता हूँ वो है फ्रॉम द फिल्म एनिमल सतरंगा। इनमें से कोई भी ट्रैक अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा नाम रेडियो पर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच अंबरबीर साहब। और हमारी कोशिश होती है एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मथुरा से वीरेंद्र जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर हिना ट्रैक के लिए, सुपर नाइस ट्रैक। ये हमें लिख रहे हैं पारस भाई, और कह रहे हैं कि गोपाल आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एंटरटेन एवरीवन्स रिक्वेस्ट एज यू हैव मिलियंस ऑफ गुड लिसनर्स। बेस्ट पार्ट ऑफ एफएम रेनबो इज दैट यू रीड एवरीवन मैसेजेस एंड वैल्यू ऑल योर लिसनर्स, ट्रस्ट मी आई एब्सोल्युटली इको दैट एंड थैंक यू सो मच। मेरा दर्द समझने के लिए झप्पी पाने को मन कर रहा है पारस भाई आपसे, इतनी आत्मीयता से आपने हमारे दर्द को समझाया। पर रब ने बना दी जोड़ी का ट्रैक सुनना चाहते हैं नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ गॉड ब्लेस यू ऑलवेज आउट सो स्वीट, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज हमें भेजा है सिमरन अनीता और सुदर्शन ने शांति नगर सोनीपत से, राज फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंचना शुरू हो चुकी है, प्लीज प्ले राज मूवी का सॉन्ग। ये है अनुजा मेरठ से, और भी बहुत सारे लोग हमें लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए आई विल गिव यू अ मिनट, एब्सोल्युटली 60 सेकेंड्स, क्योंकि

यहाँ पर मैं एक और बहुत ही छोटा सा ब्रेक लूंगा और उसके उस पार मैं बजाऊंगा वो वाला गाना जो आप सुनना चाहते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँचेगी। 9868107070 नंबर है मेरा व्हाट्सएप जो मुझ तक पहुंचेगा। एकदम लाइव इस समय स्टूडियो में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं मैं और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ और खूबसूरत गीत सुनाएं। लगभग लगभग 20 मिनट का समय मेरे पास अभी और बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आप डिसाइड करेंगे कि आप एनिमल फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं, सतरंगा या फिर राज फिल्म का, मुझे ज़रूर बताइएगा।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

जीत लिया है और यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए अलका याग्निक की आवाज में राज फिल्म का ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कोई और ट्रैक अगर आप हमारे साथ सुनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों, इस घड़ी वक्त हुआ है 1:51। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, रेडियो का किशन का नया आजय गोपाल। और अब मेरे पास एक और ट्रैक बजाने का समय बचा हुआ है, और अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ट्रैक तो 9868107070 पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि मैंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि मैं अरिजीत सिंह साहब का ट्रैक बजाऊंगा, जो कि लास्ट ट्रैक होगा। और अगर आप अरिजीत सिंह साहब का कोई खास गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भेजिए। कुछ समय मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक पर। जब मैं बोलता हूँ ना छोटा सा ब्रेक, सो आई मीन

0: एब्सोल्युटली ठीक 2 मिनट में वापस लौटूंगा, बस आप कहीं जाएगा नहीं, रीढ़ी की से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मैं आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त साजे गोपाल। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:55 यानी कि आखिरी ट्रैक प्ले करने का समय आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं प्ले करूंगा अरिजीत सिंह साहब की आवाज में कोई ट्रैक। और अगर आप सुनना चाहते हैं उनकी पसंद का कोई गाना तो आप मुझे बताइए। क्या बात है, हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट पहुंचने लगी हैं और ज़्यादातर रिक्वेस्ट इस तरह से मेरे पास पहुंची कि भैया कोई भी गाना बजा दीजिए, क्योंकि जब बात अरिजीत सिंह साहब की हो तो हर गाना सुपर हिट है। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है नूरबी खान जी का। ये मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और चंडीगढ़ से मैसेज लिखा है। आप अपना नाम भी लिखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता दोस्त। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास इम्तियाज भाई का है कीर्तिनगर दिल्ली से। और ये वाला मैसेज नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास आया है और सुनील है, इन्होंने मैसेज हमें भेजा है नागालैंड बॉर्डर से, इन्होंने हमें मैसेज भेजा। थैंक यू सो मच हमें ये मैसेज भेजने के लिए मेरे दोस्त। बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि हम आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला सके, आपकी पसंद के गीत आपको सुना सके। और ये जो सिलसिला है 102.6 FM पर जारी रहेगा। अगले वाले शो का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूँ ज्योतिका आपके साथ, लेकर आई हूँ आपका अपना शो आशियाना। हर घर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपनी वॉर्म्थ, अपनी कहानियाँ, लेकिन एक चीज जो हर घर को और भी ज्यादा अलाइव बना देती है वो क्या होता है? वो होते हैं घर के छोटे उस्ताद। कभी डांस करते हुए पूरे ड्राइंग रूम को स्टेज बना देते हैं, कभी मोबाइल की सेटिंग्स हमसे बेटर समझा देते हैं, और कभी इतनी इनोसेंट लेकिन सेंसिबल बातें बोल देते हैं कि हम बड़े लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। आज के बच्चे कॉन्फिडेंस में भी आगे हैं, क्रिएटिविटी में भी, और इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी, और शायद इसीलिए हर फैमिली में एक ऐसा लिटिल स्टार जरूर होता है जो पूरे घर की एनर्जी चेंज कर देता है। तो आज के आशियाना में हम बात करेंगे उन्हीं क्यूट, टैलेंटेड और स्मार्ट छोटे उस्तादों की, जो घर को सिर्फ घर नहीं एक हैप्पी स्पेस बना देते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी राइट हियर।
2: चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचक चो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चकलदुम चिकिचक चो

अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बम बम बोले इस गाने पे कभी आपने अपने घर के बच्चों के साथ थोड़े से ठुमके लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वेरी गुड, क्योंकि बहुत मजा आता है। और अगर नहीं लगाए हैं तो लेट मी टेल यू, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल, है ना? वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना विद मी ज्योतिका, और आज हम बात करेंगे अपने घर के छोटे उस्तादों के बारे में। सच कहूं तो आज के जो बच्चे हैं ना, काफी स्मार्ट जनरेशन है। हम लोग जब उनकी उम्र के थे तो टीवी का चैनल चेंज करना ही बहुत बड़ा काम लगता था, और आज के किड्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते करते फिल्टर्स यूज करना भी सीख जाते हैं। कभी कभी तो जेन्युइनली लगता है कि टेक्नोलॉजी के मैटर में पेरेंट्स से ज्यादा अपडेटेड तो बच्चे हैं। पापा थोड़ी ब्राइटनेस तो बढ़ा लो, या फिर मम्मा एप्लीकेशन अपडेट कर लो, या बटन दबा देना तो ये काम हो जाएगा। घर में मिनी टेक एक्सपर्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ गैजेट्स की बात नहीं है, आज के बच्चे इमोशनली भी काफी एक्सप्रेसिव हैं। अगर

घर में कोई अपसेट हो तो सबसे पहले आकर झप्पी भी वही करते हैं। और ऑनेस्टली उनकी एक छोटी सी बात कभी कभी पूरा मूड बेटर कर देती है ना। बच्चे होते ही इतने अच्छे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल ब्रेक. मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आशियाना. और आज हम बात कर रहे हैं हमारे घरों की, हमारे जो होम स्वीट होम होता है उसमें छुपे हुए, शाइन करते हुए छोटे उस्ताद. जी हाँ, हर घर में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो फुल एंटरटेनमेंट का पैकेट होता है. गेस्ट आए और परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है. कभी डांस, कभी मिमिक्री, कभी रैंडम इंग्लिश का वो जो एक्सेंट होता है, और कॉन्फिडेंस इतना कि बिल्कुल स्टेज का जैसे डर ही ना हो. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, एनी गेसेस? फैमिली भी उनकी परमानेंट ऑडियंस होती है. मम्मी वीडियो बना रही होती हैं, पापा तालियां बजा रहे होते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स प्राउडली सबको कहते हैं, हमारा बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड है. ये छोटी छोटी फैमिली मोमेंट्स ही एक्चुअल घर की रियल हैप्पीनेस होती है. क्योंकि बच्चों की एनर्जी नेचुरली इतनी पॉजिटिव होती है कि पूरा एटमॉस्फेयर लाइट और चीयरफुल हो जाता है ना. बच्चे ना हर घर की जान होते हैं. छोटे उस्ताद, हैट्स ऑफ.

बच्चे ना, वैसे आपकी खुशी भी होते हैं, आपकी दुनिया भी होते हैं, आपका सारा जहान होते हैं, क्योंकि वो आपके घर की जान होते हैं। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। वैसे एक चीज और बहुत ब्यूटीफुल होती है, सोचो क्या, आजकल के जो बच्चे हैं ना, इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कर देते हैं। हम बड़े लोग कई बार फीलिंग्स छुपा लेते हैं, लेकिन हमारे घर के बच्चे बिना हेजिटेशन के बोल देते हैं, आई लव यू मम्मा, या पापा आप ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। या आपके सामने कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे आपके साथ आके बैठे हो और पूछा हो, आप आज बहुत थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है? कभी कभी उनकी इनोसेंस में ही इतनी मेच्योरिटी होती है कि दिल को छू जाता है सब कुछ। और घर में अगर छोटे बच्चे ना हो तो घर खाली खाली सा लगता है ना? ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब बच्चों का प्यार आपको मिलता है और आप अपना प्यार बच्चों को देते हैं। हर फेस्टिवल, हर डिनर, हर आउटिंग और भी स्पेशल लगने लगती है, क्योंकि बच्चे हमारे घर की खुशी, हमारे दिल की खुशी होते हैं।

आपको स्कूल के एनुअल फंक्शंस याद है? एनुअल फंक्शंस की वो एक्साइटमेंट याद है? एक दो मिनट की परफॉर्मेंस के लिए पूरा घर प्रेपरेशन मोड में आ जाता था। कॉस्ट्यूम्स लाने हैं, कॉस्ट्यूम क्या पहनना है उसका डिस्कशन, डायलॉग्स याद करने हैं, और उसके बाद क्या, पेरेंट्स की जो एक्साइटमेंट होती थी वो बच्चों से भी ज्यादा होती थी। और फिर जब स्टेज पर अपना बच्चा परफॉर्म करता था, चाहे लाइन भूल जाए लेकिन फैमिली के लिए वही असली सुपरस्टार होता था। शायद इसीलिए बचपन की परफॉर्मेंसेस और कॉम्पिटिशन्स की मेमोरीज हम कभी भी नहीं भूल पाते। आई एम श्योर अगर आप अभी आंखें बंद करेंगे ना, तो आपको वो गाना, वो कुछ स्टेप्स जो आपकी मैम ने आपको सिखाए थे, वो आज भी आपको याद होंगे, आपके दिल के करीब होंगे। जब आप स्टेज पर बस अपनी गर्दन उठाकर अपने मम्मी पापा को स्पॉट करना चाहते थे कि कहां बैठे हैं वो, और बस एक बार आई कॉन्टैक्ट जब हो जाता था तो बस आपके चेहरे की खुशी मैच कर लेते थे वो। इन सब में उनका प्यार, वो पूरे घर का वो जो टैलेंट, पूरा घर जो साथ में शामिल होता था, क्या प्यार होता था, उसी को तो आशियाना कहते हैं।

माँ को सच्ची में सब कुछ पता होता है। आप कहें या ना कहें, वो आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, आपकी रग रग से वाकिफ हैं वो। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूं ज्योतिका और हम आज बात कर रहे हैं हमारे घर के छोटे उस्तादों के बारे में। आज के बच्चे मल्टीटास्किंग में भी कमाल हैं। एनी डाउट्स? वेल, आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो मॉर्निंग स्कूल हो, इवनिंग हॉबीज होती हैं, फिर होमवर्क भी करना पड़ता है, फिर कभी कभार कोई रील्स भी बना रहा होता है। एनर्जी लेवल ऑनेस्टली इंस्पायरिंग होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम उन्हें सिर्फ कंपटीशन और प्रेशर की तरफ पुश ना करें। हर बच्चे का अपना पेस होता है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई ड्राइंग में, और कोई सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी से घर को हैप्पी बना देता है। इसीलिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है। कभी कभी एक सिंपल सा वेल डन इतना भी कह देंगे ना हम बच्चों को, उनके लिए ना दिन बन जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो आप अगर अपने घर के बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करें तो ही अच्छा होगा।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आशियाना। और आज हम बात कर रहे हैं छोटे उस्तादों की। जी हाँ, हमारे घर के चिराग, हमारे घर की खुशी, छोटे उस्ताद। घर में जब छोटे बच्चे नहीं होते ना, तो घर कितना चुपचाप साइलेंस सा नहीं लगता। और जैसे ही घर में बच्चे होते हैं तो साइलेंस होता है कम और लाइफ होती है डबल। कभी कुशन्स का वो फोर्ट बनाना, कभी रैंडम फैशन शो चल रहा होता है, कभी पूरा घर क्रिकेट स्टेडियम बन जाता है। और उस वक्त शायद हम इरिटेट भी होते हैं, लेकिन बाद में यही मोमेंट्स सबसे प्रेशियस मेमोरीज बन जाते हैं। उनकी नॉटी बातें, रैंडम क्वेश्चंस और नॉन स्टॉप टॉकिंग ही घर को ट्रूली अलाइव रखती है ना।

जब गानों पर हमारे घर में बच्चे ठुमके मारते हैं तो मजा ही आ जाता है। वैसे अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो बच्चे सिर्फ सीखते नहीं, सिखाते भी बहुत कुछ है। क्विकली फॉरगिव करना, छोटी बातों में खुश हो जाना, ओपनली लाफ करना, और ये क्वालिटीज हम बड़ों में कहाँ होती है बताओ। छोटी छोटी बातों पर तो हम बुरा मान जाते हैं, और फिर घर के जो छोटे उस्ताद हमें याद दिलाते हैं कि हैप्पीनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। कभी आइसक्रीम मिल जाए तो खुशी, कभी आउटिंग हो जाए तो एक्साइटमेंट, और कभी बस फैमिली एक साथ बैठ जाए, आहा, तो परफेक्ट डे बन जाता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आशियाना विद मी ज्योतिका। और आपसे एक बहुत बात कहना चाहूँगी मैं, अगर आपके घर में भी कोई छोटे उस्ताद हैं तो उनकी छोटी छोटी मेमोरीज को चेरिश ज़रूर करिएगा। उनकी फ़नी वीडियो सेव करिए, उनकी क्यूट बातें याद रखिए, क्योंकि बचपन ऑनेस्टली बहुत जल्दी निकल जाता है। आज जो टॉयज़ स्कैटर्ड लगते हैं, गुस्सा आता है, जो शोर शराबा होता है, इरिटेशन तो होती है, लेकिन वही चीज़ें बाद में घर की सबसे इमोशनल याद बन जाती है। और शायद इसलिए घर का असली हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस का हमारा ये जो मीटर होता है, बच्चों की लाफ्टर से ही होता है।

माँ जब डांटती है तो बुरा तो लगता है, लेकिन माँ से ज्यादा प्यार भी हमें कौन करता है। दोस्तों, इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ आज के आशियाना में बस इतना ही। आज हमने बात की घर के उन प्यारे छोटे उस्तादों की, जो कभी अपनी टैलेंट से, कभी अपने इनोसेंस से, और कभी अपनी क्यूट नॉटी बातों से पूरे घर को हैप्पी बना देते हैं। उन्हें अप्रिशिएट करिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि बचपन की ये जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, लाइफ की सबसे वार्म मेमोरीज बन जाती हैं। मैं हूं ज्योतिका, और अब आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 4 बजे अल्फा जेन में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस, और अपने घर के छोटे उस्तादों को मेरी तरफ से एक बड़ी वाली झप्पी।

0: વાણી આકાશવાણી આકાશવાણી દિલ્હી પ્રસ્તુત કરતા હૈ વિશેષ ફોન ઇન કાર્યક્રમ રેડિયો ડોક્ટર.
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है.
2: तीन बज चुके हैं और चाय का समय हो गया है, और चाय की चुस्कियों के साथ यदि कुछ सवालों पर चर्चा भी कर ली जाए या उनका निदान मिल जाए तो चाय का मजा दुगना हो जाता है, खासतौर पर ऐसे सवाल जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं. तो आज चाय टाइम में रेडियो डॉक्टर हैं आपके साथ, करेंगे बातचीत उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद पर, यानी हाई बीपी और आयुर्वेद. हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव, जो एक आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और उच्च रक्तचाप से जुड़े आयुर्वेदिक निदान के साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में. तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो के स्टूडियो में.
3: नमस्कार मैडम.
2: नमस्कार जी. सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर रक्तचाप कितना होना चाहिए?
3: ये सबसे सरल
2: जी
3: और एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि जो रक्तचाप है
2: जी
3: उसको उच्च तभी बोलते हैं जब वो उस इंडिविजुअल की जो लेवल से अगर वो ज्यादा हो
2: जी.
3: तो वही आपका जवाब मिल गया क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो बीपी का जो रेंज है जिसको हम कहते हैं वो अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ऐसे कि 120/80 इतना होना चाहिए, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, जैसे 115 हो गया या 125 हो गया वो घबराना शुरू कर देगा, या 80 की जगह वो 85 हो गया या 84 हो गया या 75 हो गया, नीचे चला गया, वो घबराना शुरू कर दिया. इसलिए इसका जो है हमेशा रेंज बोला जाता है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमेशा अलग होता है. तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे आपका चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है और आपका ओल्ड एज है, इसमें वो चेंज होता रहता है. हो सकता है जो 140/90 फॉर एग्जाम्पल 45 ईयर्स का जो आदमी है उसके लिए नॉर्मल हो, ठीक है, वो 30 साल की उम्र का जो आदमी है उसके लिए एबनॉर्मल हो. तो आप समझ गए होंगे ये हमेशा रेंज से ही चलता है. 120/80 नॉर्मली जनरली बोलते हैं, मगर ये हमेशा रेंज होता है इसका.
2: तो जब तक आपके कॉल

0: जी, हमारा आज का विषय है उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो कॉल हम तक पहुंचा है, देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, अपना जी, सवाल
1: यूपी के, यूपी के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी, आरिफ जी।
1: जी, जैसे आयुर्वेद के बारे में आज जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब बहुत नॉर्मल सा छोटा सवाल ये है कि जैसे कभी बढ़ता है और कभी घटता है, तो इसका मतलब मकसद क्या होता है हमारे शरीर में, कि क्यों बढ़ जाता है या क्यों घट जाता है? और दूसरी बात ये, अगर ये हम हमेशा नॉर्मल रखने के लिए सोचें, तो आयुर्वेद के कौन से उपाय हैं जिसको हम अपना के इनका जो है अच्छा उपयोग कर सकें?
2: आरिफ जी, पहला सवाल आपके ये था कि बढ़ता है और घटता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले ये देखना पड़ेगा कि बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ रहा है आपका, उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 120 है, हो सकता है नेक्स्ट डे आपका 130 हो जाए, उसके बाद 120 हो जाए, या 140 चला जाए, फिर 120 आ जाए। ये अगर लगातार होता है, कोई आपका जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, जैसे लोगों को टेंशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, दिन भर काम में जो है लोग बिजी होते हैं, उसमें ऊपर नीचे होता है। ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर नीचे जो है, जैसे 120/80 जो बोलते हैं ना, जो नीचे वाला जो 80 है, वो अगर लगातार वैसा होता नहीं है, अगर लगातार वो चेंज होता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। बाकी आयुर्वेद में हो या एलोपैथी में हो या कोई भी सिस्टम में हो, बीपी का 2-3 बेसिक प्रिंसिपल से इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, एक उम्र के बाद आपकी जो है डाइजेशन पावर, जो पचाने की जो शक्ति है ना, वो खत्म हो जाती है, और कुछ चीजें अवॉइड करना चाहिए, जैसे सॉल्ट है, बहुत ज्यादा तेल, मिर्च मसाले, ऐसी चीजें। और शाम को कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए, अगर योगा कर सकते हो तो योगा करना चाहिए। ये तीन ऐसे चीज है जिससे आप बीपी से बच तो नहीं सकते, मगर दवाई जो है काफी हद तक आपके कम हो जाएंगे।
1: जी जी डॉक्टर, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया,
2: थैंक यू
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, ये थे हमारी पहली हमारे कॉलर थे, अब देखते हैं कि हमारे एक और कॉलर है, वो क्या कहते हैं। तो हेलो,
3: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मैं महमूद अली बोल रही हूँ मैडम, एयरपोर्ट से IGI।
0: ओके, एयरपोर्ट AGI से बोल रहे हैं आप, अपना सवाल रखिए, डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं।
3: मैडम ये थोड़ा बताइए, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये?
2: हाँ जी, आपने सही सवाल पूछा
0: जी।
2: कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर एक तरह का एक फैट है, ये जरूरी भी है। बहुत सारे हार्मोन्स जो है ना हमारे, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के एक और रूप होता है, उससे वो बनते हैं। मान लीजिए वो आप जरूरत से ज्यादा आपके बॉडी के अंदर है, वो कहीं ना कहीं ब्लड में जाके कहीं ना कहीं फंसेगा, जहां उसको रास्ता कम मिलता है ना, वहां जाके वो फंस जाता है। रास्ता कहाँ कम होती है? जैसे हार्ट है, हार्ट के ब्लड वेसल्स जो है उसकी जो विड्थ जो है, चौड़ाई, वो कम होती है, तो वहां जाके वो फंस सकता है। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उनका जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको नस बोलते हैं, अंदर जो है वो लचीलापन उसका खत्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे, तो वहां जाके ये चिपक जाते हैं। जब ये चिपकते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बनता है। इसलिए बहुत ज्यादा आप चिकनी वाली चीजें है, बहुत ज्यादा नॉनवेज है, बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें, इसको अवॉइड करना चाहिए।
3: जैसे हम चिकन ज्यादा खाते हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
3: तो इससे कोई प्रॉब्लम सर?
2: कोई भी चीज ज्यादा आप खाएंगे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उसको आप थोड़ा मात्रा आप कम करिए, आप लीजिए मगर मात्रा कम करके लीजिए।
3: तो सर इसकी पहचान कैसे होगी, मतलब क्या कोई टेस्ट कराए इसका कैसे?
2: हाँ, इसका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट ही होता है एक तरह का, आप करा सकते हैं, जिसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। लिपिड प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे टेस्ट है, उसमें एक टेस्ट ये भी है।
3: जी सर। और ये मेरे सर है ना, तो लेफ्ट साइड में आंख से ऊपर थोड़ा दर्द होता है कभी कभी, बहुत ज्यादा।
2: अच्छा अच्छा, एक आंख के ऊपर है या दोनों आंखों के ऊपर है?
3: नहीं नहीं, एक ही आंख के ऊपर है, मतलब साइड में थोड़ी सी ऊपर जाके, मतलब सर पे, माथे पे। कभी कभी एकदम ज्यादा।

0: तो पहले तो आपका उम्र आपने बताया नहीं, हो सकता आपका 40-50 हो, तो आई टेस्ट जरूर करा लीजिए।
1: हाँ मेरी है 40-42 समझिए आप,
0: हाँ हाँ हाँ एक बार बीपी का भी टेस्ट करा लीजिए और आई टेस्ट करा लीजिए।
1: अच्छा, वैसे वैसे कोई नशा तो नहीं करता मैं किसी भी टाइप को, मतलब आज तक बीड़ी भी नहीं पी सर।
0: अच्छी बात है, और ये दोनों आप करा लीजिए, एक तो बीपी का टेस्ट और आंखों का।
1: ओके ओके, थैंक यू सर।
0: ओके जी।
2: डॉक्टर साहब, जहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें आंख के ऊपर दर्द होता है, तो क्या ये बीपी से जुड़ा हुआ कोई दर्द हो सकता है?
0: जनरली एक आंख में तो नहीं हो सकता है। हो सकता है उनको आई रिलेटेड, विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो।
2: जी जी,
0: तो वो कराने से पता लगेगा।
2: सर, जैसे कि इन्होंने पूछा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसी तरह का एक सवाल आया है। संदीप लिख रहे हैं गुवाहाटी से, ये पूछना चाह रहे हैं कि सर बीपी क्या है, आप इसे सिंपल भाषा में समझा दीजिए। तो मुझे लगता है ऐसे हमारे बहुत सारे लिसनर्स होंगे जो जानना चाहते होंगे।
0: ये बीपी सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो जो प्रेशर आप झेल नहीं सकते, जिससे आपको नुकसान होता है, वो बीपी है। जिसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि बीपी जिसको होता है उसको पता ही नहीं लगता है कि बीपी है मुझे। वो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कभी कभार, उससे उसको लगता है कि हाँ, या कोई दोस्त बोलता है या कभी रूटीनली वो चेक करा लेते, तब उनको निकल आता है हाँ मुझे बीपी है। जनरली ये पता नहीं लगता क्योंकि ऐसा कोई सिम्टम इसका होता नहीं है। हाँ, और कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं किसी किसी में, वो जनरली आपको हेडेक हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नींद में कमी आ सकती है, और कभी कभार जो है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं कोई काम पे। और उम्र तो है ही है 40 के ऊपर, हर आदमी को एक बार करा लेने चाहिए। ये सारे लक्षण है जिससे आपको पता लगता है। हाँ, हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, वो भी चेक कर लेना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 नहीं 30 साल की उम्र से ही आपको चेक कराना जरूरी है। हो सकता है, नहीं हो सकता, वो अलग बात है, चेक कराना जरूरी है।
2: तो ये तो हमारे डॉक्टर साहब हैं। आज का हमारा विषय है उच्च रक्तचाप और उससे जुड़े आयुर्वेद से किस तरह से आप उच्च रक्तचाप का निदान पा सकते हैं, कैसे समाधान मिल सकता है। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर टी दिवाकर राव आज इस विषय पर हमसे बात कर रहे हैं। एक और मैसेज हम तक आया है, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हाई बीपी से बचने के लिए क्या करें, कौन सा नमक का सेवन करें और कितनी मात्रा में।
0: हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बीपी से बचना ना बचना वो तो एक अलग बात हो गई। बीपी जो है जनरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड दे आर सफरिंग नाउ, मतलब 40% लोग आजकल सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बदल गया है। हम लोग सेडेंट्री हो गए, एक जगह बैठ के काम करते हैं, और हम लोग खाना भी बेवक्त खाते हैं और खाते भी ज्यादा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें जो पहले नहीं होते थे इंडिया में, आजकल वो अवेलेबल है, वो भी हम लोग खाने लगे हैं।
2: जंक फूड
0: हो गया, स्टेल फूड हो गया, पता नहीं क्या क्या फूड्स आ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा है। अब नमक कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, इसमें तो थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाएगा। बाकी जो ओवरऑल नमक का क्वांटिटी है, कोई भी आप ये जो बाजार के जो फूड्स ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं वो है, तो इनडायरेक्टली वो एक कारण हो रहा है। ऊपर से आपका जो फूड हैबिट्स है वो भी बहुत असर करता है। आपका फूड हैबिट्स ऐसा है, आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाओगे, बहुत ज्यादा तेल वगैरह चीजें खाओगे और पानी कम पियोगे, उसको पचाने के लिए आप मौका ही नहीं दोगे, बेवक्त खाना खाओगे, तो वो भी कहीं ना कहीं असर करता है। और ऊपर से जो स्ट्रेस लेवल्स है हमारे, ज्यादातर ऑफिस आप स्ट्रेस मान लीजिए, जो ट्रैफिक का, जो दिल्ली में खासकर तो ट्रैफिक का जो स्ट्रेस है, घर में भी जो स्ट्रेस होता है, बाकी वर्क कल्चर ऐसा है जहां स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है, ये भी एक कारण है। और सबसे आम कारण है जो इसका बीपी का, वो है उम्र। जो आपकी उम्र बढ़ती है तो नेचुरली जो ब्लड वेजल्स के अंदर जो एलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसको लचीलापन, वो नेचुरली थोड़ा बहुत कम होता है। तो इसीलिए 40 साल के बाद हम बार बार बोलते हैं कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करा ले और ये बीपी का चेकअप करा ले। जितना जल्दी इसको डायग्नोस कर पाएंगे उतना जल्दी आपका इलाज भी हो सकता है, आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं।
2: सर, एक और सवाल आया है बिशनपुर साहिबगंज से, दिनेश गुप्ता लिख रहे हैं।
0: हाँ जी।
2: कह रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं लेकिन जरा सा रनिंग करते ही जल्दी थक जाता हूं, तो क्या कारण हो सकता है, मेरी एज 64 है।
0: देखिए, आपका एज 64 है तो आपने बीपी के बारे में तो बताया नहीं, जिक्र नहीं किया गुप्ता जी। हो सकता है वो अगर है तो उसका उसके लिए दवाई लेना आपको जरूरी है। बाकी आप थक जाते, इसका मतलब ये है कि कोई और भी कारण आपको रहा होगा, तो बाकी एक रूटीन आपका ब्लड टेस्ट कराना जरूरी होता है, जिसमें बीपी का भी टेस्ट हो, ट्राइग्लिसराइड्स का भी, लिपिड प्रोफाइल का भी, और ब्लड शुगर का भी, और बाकी जितने भी टेस्ट है जो रूटीनली होना चाहिए वो आप कराने के बाद आपको पता चलेगा।
2: तो डॉक्टर साहब काफी सारे सवाल हो गए हैं, कुछ एक कॉल्स भी आ रही हैं, तो जब तक आपके कॉल्स आते हैं हमारे पास, हम आपसे लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: एक बार फिर से स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद। डॉक्टर साहब, देखते हैं हमारे अगले कॉलर क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं हरियाणा से मनोज माझी बोल रहा हूँ मैम।
2: जी बताइए, अपना सवाल रखिए।
3: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ मैम कि डॉक्टर साहब नमस्कार सर।
4: नमस्कार जी। नमस्कार
3: मैम, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैम, जो डॉक्टर साहब ने बताया 80 और 120, ठीक है ना, तो ये क्या एज के हिसाब से भी इसका जो भी बीपी होता है क्या?
4: बिल्कुल बिल्कुल, जो 120 और 80 जो है वो एक नंबर है, वो जनरली बीपी जो है ना रेंज होता है। मान लीजिए आपके लिए 140/90 नॉर्मल है और किसी के लिए वो एबनॉर्मल भी हो सकता है, तो हर आदमी के लिए वो अलग अलग है, इसलिए हम लोग रेंज बोलते हैं।
3: एक और सवाल है डॉक्टर साहब।
4: हाँ जी हाँ जी।
3: मेरे वाइफ का एज 49-50 के अबव है,
4: हाँ जी,
3: ठीक है ना
4: जी।
3: तो उनको कभी कभी सर में चक्कर आता है, आंखों बेचैनी सा होने लगता है सर, तो क्या ये बीपी का कोई?
4: तो सबसे पहले आपको बीपी चेक करा लेना चाहिए मैडम का।
3: अच्छा,
4: हाँ, उसमें अगर कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से इलाज फिर शुरू होगा। अगर वो नहीं है तो बाकी चीजें भी आप एक बार करा लेना, अच्छा है मेरे लिए, अच्छा रहेगा।
3: थैंक यू सर। ओके सर।
2: हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और कहाँ से सवाल रख रहे हैं ये बताइए।
5: हाँ मैडम, मैं नीरज जैन बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
2: जी बताइए
5: मैडम। जैसे बीपी, मान लो मेरी एज है 45, तो मेरा जैसे बीपी मॉर्निंग काउंट आता है तकरीबन 132/85।
4: हाँ जी हाँ जी, 132/85। हाँ जी हाँ जी।
5: उसके बाद सर अगर मैं 2-3 मिनट बाद चेक करता हूँ तो आ जाता है 127/125/80/78 लाइक दैट।
4: अच्छा अच्छा।
5: और जनवरी में जनवरी में मुझे कॉल हुआ था, तो उसके बाद से थोड़ा सा ये है, तो मैं होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहा हूँ फॉर द दिस बीपी।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
5: तो सर ओके,
4: देखिए आपका जो सवाल है ना उसमें ऐसा है कि नीरज जैन साहब गुड़गांव से बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो आप रिकॉर्ड करते हैं जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल होगा मेरे हिसाब से।
5: यस सर, डिजिटल है।
4: हाँ, तो डिजिटल में +5-10 जो है चेंज आता है, ठीक है, हर बार जैसे भी आप करोगे वो 5-10 का वो आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा।
5: दूसरी
4: हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, 120-30 जो कह रहे थे आप उसकी बात कर रहा हूँ। जनरली हाँ ऐसा प्लस आर माइनस होता है 5-10 वो। तो दूसरी बात यह है कि नीचे वाला जो है ना, जो 80-85 जो रेंज में होता है, वो जनरली बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है उसमें। अगर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है तो आपका डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो एज सच आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी दवाई ले रहे हो, होम्योपैथिक दवाई ले रहे हो, वो आप लेते रहिए। बाकी योगा और एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत चलना फिरना आपका अगर हो सकता है तो वो करिए। और खाने का खाने पे कंट्रोल रखिए, खाने पे कंट्रोल और नमक पे कंट्रोल।
5: नमक से तो समय कंट्रोल कर रहा हूँ, वेट भी मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा 100 के अराउंड वेट है।
4: हाँ, ओबेसिटी भी एक कारण होता है बीपी का, इसलिए उसको भी चेक करना जरूरी है।
5: हाँ तो मतलब सर, अच्छा एक चीज पूछनी थी सर, ये मैक्सिमम मतलब कितना, जैसे मेरी 45 एज है, तो कितना हम ब्लड प्रेशर मैक्सिमम मतलब फिगर आउट कर सकते हैं?
4: देखिए आपके उम्र के हिसाब से ना 135 के आसपास आपका रहता है, मेरे जैसे आप बोल रहे हो वो बिल्कुल आपके लिए ठीक है। नीचे 80-50 से भी है तो वो आपके लिए ठीक है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आप फ्रीक्वेंटली आप उसको चेक कराते रहिए और दवाई जो है कंटिन्यूअसली लेते रहिए।
5: दूसरे दिन से चेक करता हूँ, बाकी मैं चेहरे

0: होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग मॉर्निंग।
1: ठीक है, उससे अगर कंट्रोल है तो आप लेते रहिए।
2: तो ये तो थे नीरज जी गुड़गांव से। साथ में सर कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं वो हम ले लेते हैं डॉक्टर साहब। लिखने वाले हैं रघुविंदर सिंह सुभाष नगर दिल्ली से, ये कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का परमानेंट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या है?
1: इसका सबसे आसान जवाब ये है कि इस दुनिया में परमानेंट नाम की चीज कुछ है ही नहीं,
2: है ही नहीं।
1: तो जो है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा या उसको संभालना पड़ेगा या उसको उसके साथ चलना पड़ेगा। बीपी जो है ये एक कोई बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी नहीं है, ये आज के डेट में रियलिटी है, ये सब लोग फेस कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि बीपी हो गया तो बहुत कुछ हो गया, मैं ये हो गया, मुझे वो हो गया, वो सब सोचना आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा। बल्कि आप जो हुआ है उसको कैसे आप संभाल सकते हो, सबसे पहला आपका पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे बदलना चाहिए, तभी आपका इलाज हो पाता है। जैसे मान लीजिए बीपी है तो आपको रेंज कितना ज्यादा है
2: कितना
1: वो
2: है।
1: हाँ, वो देखना जरूरी है, क्या कमी मेरे अंदर है, क्या मैं दवाई ले पा रहा हूँ या फ्रीक्वेंट। बहुत लोग ऐसा करते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं 20 mg और ये खुद ले लेते हैं 10 mg, मतलब उसके बाद 10 दिन के बाद फिर वो खुद ही बंद कर देते हैं। क्योंकि बीपी जब आप दवाई लोगे, एक दवाई एक गोली में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी आप दवाई ले लो 36 घंटा काम करता है। मान लीजिए वो 24 घंटे के बाद बीपी देखा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा देखा तब भी नॉर्मल होगा, तो 2 दिन में उसका नॉर्मल आएगा तो लगेगा कि ये बीपी हमारा है ही नहीं, मैं खामखा इसको ले रहा हूँ दवाई, फिर वो धीरे धीरे बंद करना शुरू करते। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो डॉक्टर्स के एडवाइस नहीं मानते हैं या अपने आप बीपी की दवाई जो है
2: डॉक्टर खुद बन जाते
1: हैं। तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कभी मत करिए, डॉक्टर को सोच के आपको देता है दवाई
2: जी।
1: कुछ ना कुछ उस बहुत सारे फैक्टर्स को देख के आपको दवाई देता है। तो जब भी अगर आपको बंद भी करना है, शिफ्ट भी करना है, तो उस डॉक्टर के पास जरूर जाइए। आप बोलिए मुझे ये दवाई सूट नहीं कर रहा है, मुझे कुछ और दवाई दे दीजिए, या मैं दूसरी पति जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, आजकल बहुत सारे सिस्टम्स है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। ये तो पहला आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे नमक है, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं वही चीज, मिर्च मसाला है, बेवक्त खाना अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी चीज बहुत कम लोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, चलना फिरना घूमना, ये दिल्ली में खासकर शायद नहीं हो पाता है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो टाइम निकालना आपका काम है, वो डॉक्टर का काम नहीं है। ये जब तक लोग नहीं समझेंगे बीपी बढ़ता जाएगा और दिक्कत आना शुरू हो जाएगा।
2: तो जब तक आपके कॉल्स आते हैं हमारे पास, हम आपसे लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। हमारे अगले कॉलर कौन है, जानते हैं इनका सवाल।
2: हेलो
1: हेलो
2: डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पंकज यादव बोल रहा हूँ।
3: नमस्कार नमस्कार पंकज यादव जी, अलवर से।
2: सर मेरा एक सवाल था कि एलोपैथ में जो जितने मेडिसिन है इनमें ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब कि जब तक आप लेते रहते हो तब तक आपका बीपी कंट्रोल रहता है, क्या आयुर्वेद में कंप्लीट क्योर है क्या?
3: देखिए कुछ
2: है तो मतलब कैसे कर सकते हैं उसे?
3: कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसमें लोग दावा करते हैं कि हम लोग इसको ठीक कर देंगे, जड़ से निकाल देंगे, गायब कर देंगे। ऐसा दुनिया में कुछ होता नहीं है। बहुत सारे बीमारी 2000 साल पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो एज ए पेशेंट जो है आपका काम ये है जो डॉक्टर कहता है, जो सही डॉक्टर हो, अगर वो दवाई दे रहा है वो 40 समझे देता है, 20 समझे देता है, वो कुछ सोच। मैं अभी यही कह रहा था, ये देखो खत्म करने वाली बात जो है ये आउट ऑफ द कंटेस्ट हो जाता है इस बीमारी में। ठीक है, कोई भी चीज खत्म नहीं होता। कुछ बीमारियां खासकर कुछ बीमारियां ऐसे है जो खत्म नहीं होते, तो जो नहीं होते उसके बारे में क्यों सोचना है? मेरा सवाल ये है आपसे, जो चीज आप ले सकते हो जिससे आप ठीक हो सकते हो, जिससे आपका गुजारा हो सकता है, वो लेना जरूरी है, उसी में समझदारी है। लोग क्या करते हैं, ऐसे थॉट्स लेके जाते हैं, दवाई चेंज करना शुरू करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगभग 25 साल हो गए इस मतलब इलाज करते करते। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिसको अचानक पैरालिसिस हो गया, क्यों हुआ? वो दवाई छोड़ दिया, या खुद वो किसी की दवाई खा लिया, वो उसने कहा कि मैं जड़ से मिटा दूंगा। तो नुकसान किसका हुआ? डॉक्टर का तो हुआ नहीं, डॉक्टर तो वहीं बैठा है, उसका बिजनेस चल रहा है, नुकसान हुआ पेशेंट का। तो जो चीज हमारे अंदर है जिसको जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो, जिससे आपका जिंदगी चल सकता है, दवाई से ही या एक्सरसाइज से या खाना कम करने से या कोई योगा करने से, ये सब बहुत सारे रास्ते हैं इसमें, ये सब आप कर सकते हो।
2: डेली रूटीन से हम मेंटेन कर सकते हैं, बाकी कंप्लीट क्योर इसका नहीं है।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो स्ट्रेस लेवल है, आप उस स्ट्रेस लेवल को कैसे कम कर सकते हो ये सोचो पहले। स्ट्रेस लेवल कैसे कम हो सकता है? जैसे ऐसे कोई एक्टिविटी आप देखो टीवी में, या हंसने वाली चीजें आप सुनो, अच्छी बातें सुनो, मॉर्निंग वॉक करो, लोगों से मिलो, शाम को घूमो, ये इससे जो है स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है। हमें जो है केवल इंसानी बात कर सकता है, एक दूसरे से बात करने से भी बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। ये भी एक तरह का इलाज है, दवाई नहीं है सब कुछ, ये भी है इलाज, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब मैं इसलिए आपसे ये सवाल किया है कि बहुत से लोग कहते हैं हम 100% ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
3: तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं पहले ये सेंटेंस मुझे पता था कि आप पूछोगे, इसलिए मैं पहले बोल दिया आपको, ऐसे बातों में मत आइए। जो रियलिटी है, जो सच है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ हो सकता है कल ये ठीक हो जाए, कल ऐसा कोई दवाई आ जाए इसको जड़ से ठीक कर दे, वो अलग बात है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ हाइपरटेंशन से ऐसे होते हैं, बीपी खासकर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वो कभी कभार वो कम भी हो जाते हैं
1: जी।
3: उस कैटेगरी में आप नहीं आते हो, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको
1: जी। जी सर कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, ये लिख रहे हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, कह रहे हैं कि मेरा बीपी 150/100 आता है जब मैं घर पर होता हूं, लेकिन हॉस्पिटल में जाके नॉर्मल आ जाता है। मैं दवाई भी खा रहा हूँ, दवाई का नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, और 49 इयर्स के हैं, तो ये जानना चाहते हैं कोई इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन।
3: 100/50 कह रहे थे,
1: 150/100
3: वो रहता है, और
1: घर पर रहता है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल आ जाता है।
3: नॉर्मल मतलब कम होता होगा उनका, या तो घर पे जो चेक कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं
1: खराबी है, मशीन में खराबी
3: जब। हाँ यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो नीचे वाला जो 100 कह रहा है ना, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और जो ऊपर वाला वो होता है जो 150 है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जनरली ऊपर नीचे होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है घर से हॉस्पिटल जाने से इतना चेंज नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं होगी कमी, या कुछ ना कुछ ऐसा कोई फैक्टर होगा। अगर 100 है तो दवाई के साथ साथ वो कम भी होना चाहिए। अगर वो होता है कि नहीं होता है वो चीज नहीं बताया, मगर वो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाने से कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात जाती है।
1: सर मोहम्मद सरफराज आलम दर्शना बाजार अररिया बिहार से लिख रहे हैं, रक्तचाप अधिक बढ़ जाने में कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां लूं, इन्होंने भी यही पूछा है।
3: हाँ, नाम बताना सही नहीं है, क्योंकि जैसे नाम बताएंगे लोग क्या करते हैं, वो दवाई लेना शुरू करते हैं। आयुर्वेद की एक और डिसएडवांटेज ये है, हर एक दवाई हर एक आदमी के लिए नहीं है। देखिये, हम लोग दोष देखते हैं, कोई वात का ज्यादा है उसके अंदर गुण तो दवाई अलग हो जाएगी
1: जी।
3: कोई पित्त वाला है तो उसका अलग हो जाएगा, कफ वाला है तो उसका अलग हो जाएगा। तो एक पेंट ब्रश की तरह एक दवाई ले लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दवाई होता नहीं है। हाँ, लोग उसको कमर्शलाइज करने के लिए, बेचने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाई बोलते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा, वो डॉक्टर ही जानता है कि किसको क्या दवाई देनी चाहिए। तो पहले आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, वो आपकी बॉडी कंस्टिट्यूएंसी देखेगा और आपका क्या स्थिति है, आपकी उम्र क्या है, आपके वजन क्या है, आपके मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये सब सोच के वो दवाई देते हैं। तो हर आदमी का दवाई अलग होता है। मैं एक नाम ले लूंगा कोई भी, एक्स वाई जेड। लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना जाकर वो दवाई लेना शुरू करते हैं, तो उससे उनका फायदा नहीं होगा, वो ऊपर से नुकसान
1: हो सकता है। सर, अभी आपने एक बात करी वात पित्त और कफ की, तो बीपी इन तीनों प्रवृत्तियों में भी
3: इसका डिरेंजमेंट जो होता है
1: जी,
3: जो प्राकृतिक स्थिति होती है इसकी बॉडी में, डिरेंजमेंट बहुत सारे कारण होता है। एक एज एक फैक्टर है, आपका जो लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन जिसको बोलते हैं, मतलब माँ बाप से वो आपको वो बीमारी आई है, वो एक फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कुछ चीजें आपके कैरेक्टर वाइज भी होता है, जैसे आपको बार बार गुस्सा आता है, आप कंट्रोल नहीं पा, वो भी एक कारण है बीपी बढ़ने का। और जो ऐसी दवाई आप लेते हो, अल्कोहल टोबैको है, वो सब जो वो भी एक कारण है।
1: एक मैसेज हम तक आया है, लिखने वाले हैं एच सिंह लिख रहे हैं, कह रहे हैं मुझे डायबिटीज है और मैं बीपी की और डायबिटीज की मेडिसिन लेता हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और मेरा बीपी की रीडिंग है 140/68।
3: ओके,
1: तो क्या लोअर रीडिंग सही है? एच सिंह न्यू दिल्ली से।
3: नहीं, इतना लोअर भी नहीं है
1: जी।
3: वैसे देखिए वही है कि आप 68 को 70 मान लीजिए
1: जी, 70
3: ठीक है, 148 को 150 मान लीजिए, तो इनका सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, रेंज में ही है। तो इनको जो है स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर सोचना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल्स अगर ज्यादा है तो उसके दवाई अलग होती है
1: जी।
3: जो डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है तो उसके लिए दवाई अलग होती है।
1: okay.
3: और इनका वो भी ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं बॉडी में, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की क्या स्थिति है, वो देखना पड़ेगा।
1: एक मैसेज आया है लखनऊ से, गिरीश लिख रहे हैं, कह रहे हैं मेरी उम्र 48 इयर्स की, 48 साल के हैं, अक्सर हेडेक रहता है, चश्मा यूज करता हूं और मेरी नाक के ऊपर हैवीनेस लगती है और लेफ्ट हैंड में लाइट सा पेन भी रहता है और खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं और रिसेंटली राइट आई में एक रेड स्मॉल स्पॉट बन गया है। तो क्या ये सब भी बीपी के सिम्टम्स
3: के लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि
1: सकते
3: जैसे है। ये कह रहा है रेड स्पॉट्स जनरली आंखों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीपी की समस्या हो सकती है। इनको तुरंत दिखाना पड़ेगा, एक बार चेक करा के उसके बाद बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी अगर है तो। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, इनको
1: हो सकता है। तो एक कॉल और ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
4: मैं सुनील कुमार बाका, बिहार से बोल रहा हूँ मैम।
1: बिहार से सुनील कुमार जी, हाँ जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल रखिए।
4: मेरा सवाल ये है मैम कि इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है कि शुगर में आयुर्वेदिक से बचने, मतलब आयुर्वेदिक में बचने से

0: ये क्या माने
1: सुनील जी,
0: दवाई है यार?
1: आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा हाई बीपी से रिलेटेड। तो जिस वक्त हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे ना, तब यदि आप अपना सवाल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी?
0: ठीक है मैम, अगर अगर डॉक्टर साहब को थोड़ा सा पसंद है तो दे सकते हैं जवाब, नहीं तो कोई बात नहीं,
2: देखिए
0: ट्राई करेंगे।
2: शुगर जो है बीपी ये इंटरलिंक्ड है, मतलब अगर किसी को शुगर है तो बीपी भी हो सकता है। ठीक है, और उस शुगर का बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे दवाएं हैं बाजार में, चाहे आप एलोपैथिक ले लीजिए, आयुर्वेदिक ले लीजिए, कोई भी होम्योपैथिक दवाई ले लीजिए। बेसिक शुगर का जो इलाज ये होता है कि शुगर को कंट्रोल में रखना। तो शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे लोग ये गलत सोचते हैं कि दवाएं खाने से कम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। शुगर कंट्रोल करने के लिए तीन रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपको खाने के ऊपर ध्यान देना, जो आप इनटेक ले रहे हो, जो खा रहे हो, उसको कंट्रोल में रखना, ये पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि उसको खर्च करना, जितना आप खा रहे हो उसको खर्च कैसे करोगे। खर्च आप मॉर्निंग वॉक करके कर सकते हो, इवनिंग वॉक करके कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कोई भी योगा वोगा कर सकते हो, इससे वो खर्च होता है।
1: जी।
2: जो खर्च होने के बाद जो बचता है, अगर वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, तब उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है। हम लोग इसको उल्टा सोचते हैं, पहले हम दवाई लेते हैं उसके बाद खाना जो है सोचते हैं कि कंट्रोल करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दवाई ले ली,
1: दवाई ले ली,
2: दवाई ले ली, इसलिए इवनिंग वॉक जाने की जरूरत नहीं है। हम उल्टा सोच के बीमारी को बढ़ाते हैं।
0: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: हेलो
3: हेलो।
1: जी बताइए आपका सवाल।
3: हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली वीकली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहता हूँ मशीन के थ्रू, तो ब्लड प्रेशर मेरा ऑलमोस्ट नॉर्मल ही आता है, मतलब 125 टू 68 समथिंग, लेकिन उसमें एक ब्लड पल्स करके थर्ड रीडिंग होता है, वो 58 आता है। कुछ लोगों ने बोला कि बहुत कम है वो, तो उसका कुछ प्रॉब्लम है? मेरा एज 40 है।
2: नहीं, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो रेंज जो आप बता रहे हो ना, वो उसके हिसाब से आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप एक काम और कर सकते हो, आप हर रोज, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार चेक करो।
3: हफ्ते में चेक करते हैं मतलब?
2: हाँ,
3: हर संडे
2: हाँ, हफ्ता 15 दिन में आप एक बार चेक करिए, उसी रेंज में है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज करिए या इवनिंग वॉक करिए, खाने में थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए, बाकी आपका सब सही है।
3: सर ये जो ब्लड ब्लड पल्स है ये बहुत कम होना प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है?
2: नहीं, वो ज्यादा टेक्निकल हो गया, उसके बारे में आप मत सोचिए।
3: अच्छा, क्योंकि डॉक्टर जो उसका नॉर्मल रेंज बताते हैं वो 68 समथिंग बताते।
2: हाँ, प्रॉब्लम यही है कि लोग जैसे नॉर्मल रेंज के नीचे ऊपर चले जाते हैं ना, उनका वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
3: जी।
2: तो बहुत कुछ देखिए, डॉक्टर को सोचने के लिए मौका दीजिए, आपको सोचना है बस, नॉर्मल है तो आपको खुश रहना है, खुश रहने से ही आपका बीपी कम हो जाएगा।
3: जी। सर एक और क्वेश्चन था छोटा सा, मेरी वाइफ के लिए है।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: उनका 38 है, उनका ब्लड प्रेशर यूजली हाई रहता है, जो मशीन बताता है वो हाई लिख के बताता है, बट वो 138 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है वो अराउंड 72-75 है ऐसा।
2: अच्छा, वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका स्ट्रेस लेवल है तो आप उनको योगा होगा जो घर पे कर सकते हैं उसको वो सिखाइए मैडम को, या इवनिंग वॉक कर सकते हैं तो वो कराइए, उसके बाद देखिए अगर कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा।
1: जी। तो ये तो थे हमारे सवाल, हम फोन लाइंस के थ्रू भी आपसे ले रहे हैं और साथ साथ व्हाट्सएप पे भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बीच में थोड़ा सा यदि म्यूजिकल ब्रेक भी मिल जाए तो हमारे लिसनर्स के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और हमारे डॉक्टर साहब से भी जो लगातार सवालों के जवाब देकर थोड़ा सा शायद थक गए होंगे। जी चलिए, थके नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में।

0: एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में आप सभी लिसनर्स का स्वागत। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया है लिखने वाले हैं कि डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बंदा बीपी की गोली लेता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? मैंने ये सुना है कि किसी का बीपी या शुगर की गोली यदि लग जाती है तो उसे जरूर लेनी पड़ती है, दूसरी या तीसरी टेंशन भी लग जाती है।
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है मैडम।
0: लिखने वाले हैं जालंधर से राज।
1: हाँ राज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, आप जालंधर से हैं, अच्छी बात है। देखिए, ये जो बीपी और शुगर, ये ऐसा है, ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको या तो दवाई लेनी पड़ेगी या कंट्रोल में रखने के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा, जैसे फूड कंट्रोल या

0: आपका जो है एक्सरसाइज वगैरह करना है, एक्टिव रहना है, ये सब स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है, ये सब कुछ जो है ना आप अकेले विदाउट मेडिसिन कभी कभार कर नहीं पाते हैं। कभी कभार मेडिसिन इज द ओनली ऑप्शन या जो मेन ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। ऐसे भी कुछ बीपी होते हैं जिसमें मेडिसिन लेना ही पड़ता है। तो बीपी से बचने के लिए, बीपी से बहुत सारे ऐसे बीमारी होती है जो बाद में बहुत नुकसानदायक होता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक हो गया आपको, किसी एक अंग जो है पैरालाइज हो गया, वो ज्यादा मतलब खतरनाक चीज है या साइड इफेक्ट खतरनाक चीज है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा क्या सही रहेगा। साइड इफेक्ट्स हर दवाई के साइड इफेक्ट होता है,
1: वो कुछ भी साइड इफेक्ट होते हैं।
0: हाँ, जो जरूरत नहीं आप ले रहे हो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट दूसरी तरह का इफेक्ट होता है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स के बारे में आप ज्यादा ना सोचे, डॉक्टर जरूर उसके बारे में जानते हैं, डोज भी उसी हिसाब से वो लोग एडजस्ट भी करते हैं, उससे बचने के लिए कुछ और भी दवाई कॉम्बिनेशन आपको देते हैं। तो दवाई अगर आपको जरूरत है, आपके बीपी उसी से कंट्रोल होता है, तो आप आंख बंद करके वो दवाई मेरे हिसाब से लेना चाहिए।
1: एक कॉल आई है हम तक। हेलो, हाँ जी बोलिए।
2: हेलो,
1: हेलो जी बताइए।
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बताइए आपका सवाल बताइए।
2: मैं जीएस चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को नमस्ते। डॉक्टर
0: नमस्ते जी,
2: काफी कुछ डिटेल में बता दिया, मैं चाहता हूँ कि 4-5 टिप्स दे दो आप, ताकि टेंशन ना हो बीपी बढ़ने से। बीपी जो है वो रहना ही है। हाँ जी,
0: हाँ जी, हाँ जी, आपका उम्र नहीं बताया सर। हाँ,
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, अपनी उम्र बताइए।
0: अपनी उम्र, उम्र बताया नहीं आपने। उम्र, उम्र, एज,
2: एज है 64 प्लस है। अच्छा, और मेरा बीपी रहता है 95, 130, 140।
0: ठीक है जी, आपकी उम्र के लिए सही है। सबसे पहला काम, पहला काम आप ये करिए, सवेरे उठिए, वॉक करने की कोशिश करिए, अकेले नहीं, या तो आप अपने साथ किसी को ले जाइए, फैमिली मेंबर को, अगर नहीं है तो आपके दोस्त गण होंगे आसपास, उनसे जरूर आप 1-1.5 घंटा बात करिए। ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस अगर कोई भी चीज कम करता है वो यही चीज है। आपके दोस्तों से मिलिए, बातचीत करिए, और आपका रूटीन एक्टिविटी जो भी है, आपको जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसको आप जरूर करिए, और आप टाइमली खाना खाइए। खाना टाइमली खाना और मिताहार जो बोलते हैं ना, जो आहार जिस आपके लिए जो सही है, या जो मात्रा, मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी, क्वांटिटी उतना ही खाइए जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा मत खाइए। और नमक मिर्च मसाला का जरूर आप ध्यान रखिए। आप योगा कर सकते तो योगा करिए। अगर बीपी अगर बढ़ता है तो दवाई जरूर रेगुलरली लीजिए, और उसका पांचवा ये मेरा एडवाइस है कि उसका डोज आप अपने आप से कम मत करिए।
1: सर, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आया है। सीता देवी जी लिख रही हैं, 70 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने कहा है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेती हैं हाई बीपी के लिए पिछले 4 साल से।
0: हाँ,
1: तो ये इस दवाई को डिसकंटिन्यू करना चाहती हैं, तो आप प्लीज सजेस्ट कीजिए कि डिसकंटिन्यू करने का क्या मेथड है।
0: देखिए, डिसकंटिन्यू करने का 2-3 मेथड्स है। पहला मेथड ये है कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपने कारण नहीं बताया, आपको कोई दिक्कत हो रही है उससे या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आपको दिक्कत कर रहा होगा, ये मैं मान के चलूंगा। तो सेकंड ऑप्शन ये बचता है कि अल्टरनेटिव कोई दूसरी दवाई लेना, वो उसी सिस्टम का क्यों ना हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उस सिस्टम को ही छोड़ना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद और होम्योपैथिक में जा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी दवाई है। आपका पहले डॉक्टर साहब चेक करके जो भी कारगर दवाई होगी आपके लिए वो जरूर देंगे।
1: सर, सवाल अब हमारे, हमें यही खत्म करने पड़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत ही थोड़ा सा बचा है, लेकिन चलते चलते एक बहुत जरूरी सवाल है कि ठंड का मौसम और हम जानते हैं कि उच्च रक्तचाप की शिकायत ज्यादा आ जाती है, तो उसका निदान क्या है, और जिन्हें नहीं भी है ये प्रॉब्लम उन्हें भी किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में बता दीजिए।
0: तो विंटर में ज्यादातर क्या होता है, आपका रूटीन एक्टिविटी कम हो जाती है, जो जैसे हम लोग सवेरे घूमते वो नहीं हो पाते, और दिन कम हो जाता है, 5:30 बजे यहाँ अंधेरा भी हो जाता है, तो शाम को भी हम बाहर नहीं निकल पाते। तो उसके बाद जो विंटर में बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम ज्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आपका जो है वो नमक होता है, बहुत सारी चक्की की टाइप की चीजें खाते हैं, उसमें गुड़ चीनी विनी होता है, जो खाना भी ओवर ईटिंग भी हो जाती है। ये 2 मेन कारण है। उसके साथ साथ नमक तो आप लेते ही हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, और टाइमली खाना नहीं हो पा रहे, और घर ज्यादातर आप घर में रहते हो, तो उसके वजह से आपको बीमारी जो भी है एग्जिस्टिंग है वो बढ़ सकता है, और अगर नहीं है तो आ भी सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आपको टाइम मिलता है आप बाहर निकले, एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, और ये सब चीजें हैं उसको सही मात्रा में ले।
1: डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, उच्च रक्तचाप और आयुर्वेद से जुड़े हुए। तो यदि आप भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव, उचित खान पान करते करते हैं और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने रक्तचाप को कंट्रोल में कर सकते हैं। कार्यक्रम से

0: संबंधित किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमें इस ईमेल पर लिख सकते हैं healthairdelhi@gmail.com healthairdelhi@gmail.com।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंस टेक पार्क के पहले चरण और ग्रमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने

चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है।
एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने

0: बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, दिल की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड प्यार दे और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो, तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूं ज्योतिका, लेकर आई हूं आपका अपना फेवरेट यूथफुल शो अल्फा जैन। अभी आपने हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे सुना और अब बारी है अल्फा जैन की। आज का शो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 90 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ आकाशवाणी। 90 साल मतलब जनरेशन की यादें, काउंटलेस आवाजें, म्यूजिक, इमोशंस और वो कनेक्शन जो सिर्फ रेडियो क्रिएट कर सकता है। कभी रेडियो घर का मॉर्निंग रूटीन होता था, कभी क्रिकेट कमेंट्री का एक्साइटमेंट, और कभी रात के इमोशंस, रात के जो ये शोज होते थे, आपका इमोशनल कंपेनियन बनते थे। और ऑनेस्टली, इतने डिजिटल वर्ल्ड में भी रेडियो की वार्म्थ बिल्कुल अलग ही फील होती है। तो आज का अल्फा जैन एक फन क्विज स्पेशल होने वाला है। मैं पूछूंगी रेडियो और आकाशवाणी से जुड़े इंटरेस्टिंग सवाल और आपके मैसेजेस आएंगे डायरेक्टली हम तक। रेडी हो जाएं? चलिए शुरू करते हैं। इस म्यूजिकल और नॉस्टैल्जिक सफर को।

तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्विज। जी हाँ, रेडियो का चार्म ही कुछ और होता है। बिना विजुअल्स के सिर्फ आवाज से इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, और शायद इसीलिए रेडियो को इमेजिनेशन का मीडियम भी कहा जाता है। आज का पहला सवाल बहुत सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग भी। AIR, जी हाँ, AIR का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट आप मुझे अपना आंसर भेज दीजिए 9868107070 पर। देखते हैं हमारे अल्फा जेन लिसनर्स कितने बड़े रेडियो एक्सपर्ट्स हैं। 90 ब्यूटीफुल इयर्स ऑफ आकाशवाणी। फटाफट AIR का फुल फॉर्म भेज दीजिए ना मुझे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration and

0: tourist care.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक आफ्टर दिस एड ब्रेक। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन। आज का शो बहुत स्पेशल है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बस कहा ही था, 90 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ आकाशवाणी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज फन क्विज का माहौल है। मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवाल और जानते हैं आप कितना जानते हैं रेडियो को। अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा था AIR का फुल फॉर्म एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूं, इनबॉक्स, जी हाँ, व्हाट्सएप का ये इनबॉक्स फुल हो चुका है क्योंकि सबको सही जवाब ऑफ कोर्स पता है। कई लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है, अगर आप अपना नाम भी लिखते कहां से लिख रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता। फॉर एग्जाम्पल जैसे रजनीश राठी जी ने लिखा है महेंद्रगढ़ से, प्रवीण लिखते हैं, जिया लिखती हैं दिल्ली से, और युक्ति भी हमें दिल्ली से लिखती हैं, और प्रदीप लिखते हैं हमें अजमेर से, एंड गौरव मयूर विहार से, भूर्वी सिंह मोदी नगर से, एंड शिवम अगेन फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच, आप सब मुझे बहुत मैसेजेस कर रहे हैं। मैं फटाफट जितने नाम ले सकती हूँ मैं लेना चाहूंगी। यहाँ पर मृदुल है फरीदाबाद से, एंड आप सब ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो। जी हाँ, AIR का फुल फॉर्म इज ऑल इंडिया रेडियो, है ना, ये तो हम सब जानते हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी ना, रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं, इमोशंस का पार्ट है। मॉर्निंग भजन्स, न्यूज बुलेटिन्स, बिना का गीत माला, आहा, क्रिकेट कमेंट्री, हर जनरेशन की रेडियो से जुड़ी अपनी खास मेमोरीज हैं। और इसी नॉस्टैल्जिया के साथ मेरा अगला सवाल, आकाशवाणी नाम किसने सजेस्ट किया था? ध्यान से सुनिएगा मेरा ये सवाल, आकाशवाणी का ये जो नाम है ये किसने सजेस्ट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद। मैंने आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं थोड़ा और आसान करने के लिए, आप इसमें से पिक कीजिए। 9868107070, आकाशवाणी नाम किसने सजेस्ट किया था? आपका जवाब का इंतजार कर रही हूं मैं।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं अल्फा जेन और आज मैं आपके साथ खेल रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन क्विज सेलिब्रेटिंग ब्यूटिफुल 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी. और मेरा सवाल आपसे बड़ा ही सिंपल था, आकाशवाणी नाम किसने सजेस्ट किया था. और मुझे आंसर्स बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको सिर्फ तीन ऑप्शंस दिए थे. ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन एंड ऑप्शन सी प्रेमचंद. आपको इन तीनों में से पिक करना था तो जिन्होंने इसके अलावा मुझे आंसर्स दिए हैं आई एम सॉरी, लेकिन सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर. गौरव मयूर विहार दिल्ली से लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एग्जैक्टली. शालू लिखती हैं शादीपुर से. सुमन हमें लिखती हैं दिल्ली से. एंड हु एल्स इज जॉइनिंग अस, मृदुल फ्रॉम फरीदाबाद रविंद्रनाथ टैगोर एंड प्रवीण फ्रॉम, आपने जगह नहीं लिखी, आप कहां से बात कर रहे हैं, कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आपका आंसर एकदम करेक्ट है रविंद्रनाथ टैगोर. और इसके अलावा अगर किसी और ने मुझे जवाब दिए हैं आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस तो आई एम सॉरी, आकाशवाणी नाम जी हाँ बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा. आपका नाम है गणेश कुमार. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं. और इसी कड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका यहाँ पर जवाब सही नहीं हुआ है. लेट्स सी आप आगे रेडियो को कितना जानते हैं. अगला सवाल आप मेरा ध्यान से सुनिएगा. आज की स्ट्रीमिंग

के जमाने में जब रेडियो पर हम अपने फेवरेट गाने अचानक बजते सुनते हैं तो कितना मजा नहीं आ जाता। वहीं पे दोबारा से स्टेशन ट्यून कर देते हैं। ओहो, इसकी ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। नो प्लेलिस्ट, नो स्किपिंग, बस प्योर सरप्राइज एंड दैट ब्यूटिफुल फीलिंग। इसी रेडियो वाइब के साथ मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑफिशियली किस ईयर में शुरू हुई थी? अगेन मैं आपको तीन ऑप्शंस देती हूँ। ऑप्शन ए 1927, 1947 या फिर 1935। मैसेजेस भेजते रहिए और हाँ, चीटिंग बिल्कुल मत करना। 9868107070।

बस थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑफिशियली किस ईयर में शुरू हुई थी, और देखिए देखिए मुझे जवाब आने शुरू हो गए। सुमन दिल्ली से लिखती है 1927, अमन कुमार बागपत से लिखते हैं 1927, प्रदीप सेठ अजमेर से आपने जो आंसर दिया है 1935, आई एम सॉरी ये गलत आंसर है। मृदुल लिखते हैं फरीदाबाद से 1927, जी आर डेली 1925, सॉरी यू आर रॉन्ग हियर, 1927 है सही जवाब। लक्ष्मी अरविंद निशा प्रमोद एंड मम्मी पापा, जी हाँ ये कहाँ से लिखते हैं आप, लिखते हैं हमें उत्तराखंड से, जी हाँ आपका सही जवाब है 1927। केसी सिन्हा किशनगढ़ बिहार से 1927 लिखते हैं। प्रवीण चौहान खारगोन आपका मध्य प्रदेश से 1927, और एम वी गोपाल जी 1927, जी हाँ आपका भी सही जवाब है। भुवनेश्वर से नितम लिखते हैं हमें 1927, आप सब ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अगर मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ले पा रही हूँ मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन ये हमारा शो है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या पता अगला सवाल आप एकदम सही गैस कर सकें। रेडियो की सबसे ब्यूटीफुल बात आपको तो पता है ना, ये एज ग्रुप से हर एज ग्रुप से कनेक्ट करता है, ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर जेन जी तक हर किसी के पास रेडियो की एक स्पेशल मेमोरी जरूर होती है। किसी को ओल्ड सॉन्ग्स याद आते हैं तो किसी को लेट नाइट डेडिकेशंस और किसी को क्रिकेट कमेंट्री के वो टेंस वाले मोमेंट्स। चलिए अगला सवाल सुनते हैं क्या है। विविध भारती किससे ज्यादा रिलेटेड है, मतलब विविध भारती पे सबसे ज्यादा क्या सुना जाता है, क्या वहां पे सिर्फ स्पोर्ट्स आता है या बहुत ही दिल को छू जाने वाला म्यूजिक। आप मुझे अपने आंसर्स भेजिए 9868107070 पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल एड ब्रेक। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन। और आज हमारा चल रहा है फन क्विज क्वेश्चंस। जी हाँ, 90 ब्यूटीफुल इयर्स ऑफ आकाशवाणी और मैं आपसे कुछ रेडियो रिलेटेड सवाल

लेकर के आई हूँ। रिसेंटली अभी बस लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था, विविध भारती किस लिए, मतलब किस लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? क्या वहां पे सिर्फ स्पोर्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स, या फिर आपको दिल छू जाने वाला म्यूजिक? एंड ट्रस्ट मी, मेरा स्क्रीन फुल हो चुका है, क्योंकि आप म्यूजिक से इतना प्यार करते हैं कि सबने, ट्रस्ट मी, सबने एकदम सही जवाब दिया है, और वो है म्यूजिक। जी हाँ, सबने एक ही जैसा सब अपना आंसर दिया है। अभिलाष लिखते हैं त्रिपुरा से, म्यूजिक। रजनीश राठी महेंद्रगढ़ से, मृदुल फरीदाबाद से, प्रदीप सेठी अजमेर से, भुवनेश्वर नेतम छत्तीसगढ़ से, पुष्पेंद्र कुमार मेरठ से लिखते हैं, और सुमन जी ने भी एकदम सही जवाब दिया है। सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से, एंड देर आर सो मेनी आंसर्स फ्लडिंग इन, मैं शायद सबके नाम ना ले पाऊं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, आप सब हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, और आप हम सबसे इतना प्यार करते हैं, एंड म्यूजिक ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट वी कांट लिव विदाउट। सही जवाब इसका म्यूजिक है, और ऑनेस्टली बहुत मजा आ रहा है ये, मैं आपके साथ ये जो फन क्विज यहाँ पर खेल रही हूँ। और अगला सवाल मैं आपकी तरफ अब फेंकने जा रही हूँ, ध्यान से पकड़िएगा। कहाँ से शुरू किया जाए? देखो, कभी मॉर्निंग चाय के साथ बैकग्राउंड में जब कंपेनियन बज रहा होता है ना रेडियो, ट्रैफिक का मूड कभी लाइट हो जाता है, कभी रात का वो जो साइलेंस में कंफर्टिंग जोन का म्यूजिक आता है, हाय, कई बार वो जो दिल को टच करने वाली आवाज होती है ना, बड़ी खास होती है। और शायद इसीलिए 90 ईयर्स के बाद भी आकाशवाणी हर जनरेशन के दिल के इतना क्लोज है। टेक्नोलॉजी बदल गई, स्क्रीन्स बदल गए, लेकिन रेडियो की वार्म्थ आज भी बिल्कुल सेम है। और अब मेरा अगला सवाल, रेडियो पर गाने डेडिकेट करने को कॉमनली क्या कहा जाता है जब आप किसी के लिए गाना प्ले करना चाहते हैं? दो ऑप्शंस हैं, लाइव स्ट्रीमिंग या सॉन्ग रिक्वेस्ट। जल्दी से अपना आंसर भेजिए और बताइए आपने कभी किसी के लिए रेडियो पर गाना डेडिकेट किया है क्या? 9868107070।

और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि ट्रस्ट मी, यहाँ पर एक से बढ़कर एक मेरे को चैट्स बढ़ती जा रही हैं, स्क्रीन लोड होता जा रहा है एंड एवरीबॉडी इज गिविंग मी करेक्ट आंसर्स। जी हाँ, जब आप किसी के लिए रेडियो पर गाना बजाना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो उसका सही जवाब है सॉन्ग रिक्वेस्ट, ना कि लाइव स्ट्रीमिंग। आई एम रियली हैप्पी, सब रेडियो को बहुत पसंद करते हैं। ये वाला हमें जवाब दिया है तेजपाल सिंह ने यमुना नगर से, ये सॉन्ग रिक्वेस्ट लिखते हैं। एंड रामधारी जी भी हमको सही जवाब आपने यहाँ पे दिया है। निखिल कुमार बिहार से, कुलदीप जी लिखते हैं गुजरात से सॉन्ग रिक्वेस्ट, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से, कौशेंद्र सिंह जी भी लिखते हैं नोएडा से एंड भुवनेश्वर नेतम अगेन हमें लिखते हैं छत्तीसगढ़ से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ अस एंड आप सब ने एकदम सही जवाब दिया है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर आपके आंसर्स देखने में, दैट यू ऑल लव रेडियो सो मच। दोस्तों, इसी ब्यूटीफुल रेडियो सेलिब्रेशन के साथ आज का अल्फा जेन क्विज स्पेशल हम यहीं पर रैप करते हैं। आज आपके मैसेजेस, आंसर्स और एक्साइटमेंट ने शो को और भी स्पेशल बना दिया। 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी, ट्रूली अ जर्नी ऑफ

voices, music, emotions, and countless memories. Honestly, radio की जो warmth है ना, शायद कभी old हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये directly दिल से connect करता है. मैं हूं ज्योतिका, आपसे फिर मुलाकात होगी next show में नए vibes और नए conversations के साथ. तब तक के लिए आप बस यहीं जुड़े रहिए, keep listening, keep smiling और radio को अपनी life का part हमेशा हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि we really love you all the listeners.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।

0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमरीका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबूधाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम सिटी लाइट्स हाजिर है लेकर के शाहिद।

आज है 17 मई, और 17 मई का दिन जो होता है वह बहुत होता है खास पूरी दुनिया में, क्योंकि 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। आज के दिन को सेलिब्रेट करने का या ऑब्जर्व करने का जो पर्पज है वो इसलिए किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और डिजिटल इंक्लूजन की इंपॉर्टेंस को समझा भी जाए और समझाया भी जा सके। ये दिन 1865 में एस्टैब्लिश किए गए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की याद दिलाता है। और हमें फिर से ये दिन ये बताता है, याद दिलाता है कि टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट लोगों को आपस में जोड़ते हैं और एजुकेशन से लेकर के हेल्थ केयर, कॉमर्स और इमरजेंसी सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं। 2026 की थीम है डिजिटल लाइफ लाइन्स, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, जो स्ट्रॉन्ग और सेफ नेटवर्क बनाने पर जोर देती है। और आप जानते हैं कि आज की जो दुनिया है वो इंटरकनेक्टेड है पूरी दुनिया, और इस नेटवर्क के साथ हम सब भी जुड़े हुए हैं, तो इसका सेफ और सिक्योर इस्तेमाल करें, इसका गलत इस्तेमाल ना होने दें, और ये अवेयरनेस भी सब तक पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी का सुहाना और यादगार सफर, 90 वर्षों का सफर, हमारी रेनबो की स्पेशल प्रेजेंटेशन आकाशवाणी 890 निशा भारद्वाज के साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 890 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज हम जानेंगे समाचार सेवाओं के पुनर्गठन के बारे में। सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार तंत्र को आधुनिक और अधिक केंद्रित बनाने के लिए बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया। सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को दो विशिष्ट विभागों में विभाजित कर दिया गया, एक था न्यूज सर्विस डिविजन और दूसरा था एक्सटर्नल सर्विस डिविजन। इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर अधिक प्रभावी बनाना था। न्यू सर्विस डिवीजन यानी NSD की जिम्मेदारी देश के भीतर समाचार पहुंचाना था, जबकि एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन यानी ESD का कार्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज बुलंद करना था। तो श्रोता

0: रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी @90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बिना कोई सिम्टम्स शो किए आहिस्ता आहिस्ता हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। स्ट्रोक, किडनी डिजीज और प्री मेच्योर डेथ का भी बड़ा कारण बनता है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, इससे जुड़े खतरों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल आज ही के दिन यानी 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, और कमाल की बात यह भी है कि उनमें से ज्यादातर को इसकी जानकारी, इसकी खबर ही नहीं है। इसीलिए तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। काम की बात यह है कि स्ट्रेस को कम करें, नमक का अपने खाने में इस्तेमाल कम करें, हेल्दी बैलेंस डाइट लें, और अपना सैचुरेटेड फैट जो आप खाने में लेते हैं उसको अनसैचुरेटेड फैट से बदल दें, यानी कि नट्स वगैरह। उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल फूड को लिमिट कर लें, जैसे कि ऑर्गन मीट्स, एनिमल फैट्स वगैरह, और फाइबर को अपने डाइट में, अपने खाने में बढ़ाएं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ओट्स, बार्ली वगैरह। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक्सपर्ट, हर डॉक्टर बताता है, वो ये कि अपने जिंदगी में, अपने रूटीन में शामिल करें एक्सरसाइज को, लाइट एक्सरसाइज जरूर करें और वॉक जरूर करें, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, और टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ गुस्सा जरा कम करें, खुश रहें और सबको खुश भी रखें।

समर वेकेशंस के दौरान बच्चों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी ला रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD। दिल्ली के 20 स्कूलों में 8 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संस्कार रंग टोली थिएटर इन एजुकेशन कंपनी ला रहे हैं एक्साइटिंग समर थिएटर वर्कशॉप 2026। 22 मई से 21 जून तक चलने वाली इस वर्कशॉप में बच्चे केवल एक्टिंग स्किल्स ही नहीं सीखेंगे, अपनी एक्टिंग को ही नहीं आजमाएंगे, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी निखरेगा। आप भी अपने बच्चों को इस स्पेशल समर थिएटर वर्कशॉप 2026 का हिस्सा बनाने के लिए रजिस्टर करें NSD.gov.in पर।

श्रद्धा कपूर और अरमान मलिक की खूबसूरत आवाज, खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द मूवी बागी। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद, आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो। हम सभी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली की लाइफलाइन है दिल्ली मेट्रो। कन्वीनियंट, हैसल फ्री और फास्ट ट्रैवल के लिए हम सभी मेट्रो का इस्तेमाल करते ही हैं। मौजूदा हालात में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और पर्यावरण स्थिरता, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिजिलियंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अहमियत को पहचानते हुए मेट्रो सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफरेंस दें, क्योंकि आपकी सहूलत के लिए ही DMRC एडिशनल ट्रेन्स और ट्रिप्स शुरू कर रही है कल से। और साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग, एडिशनल टिकट काउंटर्स और DMRC मेट्रो सारथी ऐप को भी अब आप न सिर्फ टिकट्स की बुकिंग के लिए बल्कि ऑटो या बाइक, टैक्सी बुक करने के लिए भी और ज्यादा कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि डोर टू डोर सर्विसेज के लिए भी अब इसको और ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आजकल फ्यूल के रेट्स बढ़ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ट्रैफिक में अक्सर हम फंस कर रह जाते हैं, अपने काम के लिए भी अक्सर लेट होते हैं और हमारी बहुत सारी चीजों का नुकसान भी होता है। तो कन्वीनियंट के लिए, अपने फास्ट ट्रैवल के लिए और बहुत ही आरामदायक सफर के लिए आप दिल्ली मेट्रो का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा करें इस्तेमाल।

बद्रीनाथ की दुल्हन ऐसे ये खूबसूरत ट्रैक, अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद और आप सुन रहे हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट में भी मेरे पास है बहुत सारी काम की अपडेट्स आपके साथ शेयर करने के लिए, और ट्रैफिक डाइवर्जन जो है आज शाम को, क्योंकि आज आईपीएल मैच होने वाला है दिल्ली में, वो भी आपको बताऊंगा, और भी कुछ जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बस बने रहें आप मेरे साथ और सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: आय हाय,
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है इस वक्त, उसने सब लोगों की जो है बैंड बजा रखी है और अच्छा खासा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म इस वक्त चल रहा है मौसम। आज का जो मैक्स टेम्परेचर वो बताया गया 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी ये कम है। क्योंकि IMD की प्रेडिक्शन के मुताबिक कल से टेम्परेचर और बढ़ेगा, हेजी एंड वेरी वेरी हॉट, और जो हीट वेव चल रही है उसमें भी जाहिर है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। कल यानी आने वाले मंडे से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है मैक्स टेम्परेचर, अनबिलीवेबल। और मिनिमम भी जो रहेगा वो रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और अभी जो आने वाला हफ्ता है वो लगभग ऐसा ही रहने वाला है। आप जब सुबह निकलें अपने घर से या दिन में भी किसी समय अपने किसी काम से बाहर जाएं, तो ये देखें कि बहुत जरूरी है, आपकी जॉब है, आपका बहुत जरूरी काम है, और अपनी तैयारी से निकलें, पानी की बोतल साथ में रखें और कवर करें अपने सर को भी अपने हाथों को भी। और आपको बता दूं कि आज शाम को IPL मैच होने जा रहा है। आज शाम 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम में, जो सेंट्रल दिल्ली में है राजघाट के पास, वहां पर हो रहा है आज दिल्ली और राजस्थान के बीच में मैच। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि हैवी व्हीकल्स का तो बैन हो गई होगा दरियागंज जो दिल्ली गेट से लेकर IDO के बीच में, लेकिन इसके अलावा वैसे भी ट्रैफिक काफी ज्यादा मिसमैनेज हो सकता है, तो अवॉइड करें आप इसके आसपास के एरियाज को, रोड्स को, ताकि आप अपना जहां पर जा रहे हैं वो भी कन्वीनियंटली पहुंच सके। और अगर मैच देखने के लिए आ रहे हैं तो भी आप जो डिजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस है उसका करें इस्तेमाल।

किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना आपको हो और ना ही ट्रैफिक से में आप उलझें या ट्रैफिक बढ़े, इसलिए ट्रैफिक गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें और ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर नजर में रखें।

हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सप्रेसवेज पर हाई स्पीड की वजह से टू व्हीलर्स की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा स्पीड में गाड़ियां चलती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बैन के बावजूद टू व्हीलर्स की मूवमेंट जारी है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर कई जगह बाइक्स, स्कूटीज स्लो स्पीड में और अक्सर रॉन्ग डायरेक्शन यानी अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक दौड़ती नजर आ रही हैं। और यही वजह बनता है भयानक हादसों का। आमतौर पर देखा जाता है कि ऑफिस आवर्स में सुबह और शाम ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं शॉर्टकट मारने के चक्कर में। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तो शहर में स्ट्रिक्ट ऑपरेशन चलाया हुआ है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ, और खूब चालान भी काटे जा रहे हैं। पब्लिक ने अपील की है कि ऐसा ही अभियान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी चलाया जाए, ताकि लोगों की जो मनमानी है और जो खतरों से खेला जा रहा है उस पर भी किसी हद तक तो रोक लगे या उसमें कुछ थोड़ी बहुत तो कमी आए, ऐसी उम्मीद है।

सर ये माँ का लाडले और जो लाडलियाँ हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाएं, और बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन कान से तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इसमें आपकी जान को खतरा है और आसपास जो आपके चल रहे हैं उनको भी खतरा हो सकता है। पर शाहिद का समय अब हुआ खत्म, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। विकास आ गए हैं लेकर के मैसेज मसाला मिक्स, एंजॉय विद हिम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

0: दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स। और आज के सफर में मैं हूं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और दिल की बात अब भी पूछता हूं, कुछ मैसेजेस आ चुके हैं जो हमेशा की तरह आ जाते हैं। एक मैसेज MMM लिखा है मेरे दोस्त ने, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये कहना चाहूंगा उन दोस्तों के लिए कि अपना नाम और जिस जगह से आप लिख रहे हैं तो जरूर लिखा करें। और बहुत लंबी सी एक फहरिस्त भेज दी है मेरे दोस्त ने, तो शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल। और अपने दिल की बात पहले मैं पूछ लेता हूं कि आज मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। तो कोई ऐसा वाक्या अपनी जिंदगी का बताइए जिस मोड़ पर आपको ये लगा हो कि कोई पास का रिश्ता

खुराना जी, सिराज मिथुन, चांद खान, मुर्तजा खान, मिस धर्म भाटिया, वकार फरीदी, धर्मवीर जी, भगवती जी, सभी श्रोता जो है आकाशवाणी की पूरी टीम आ चुकी है और साथ में जुड़े हैं हमारे साथ अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से। और यही कहना चाहूंगा कि जो दोस्त हैं हमारे जो सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से प्रोग्राम, तो एक थोड़ी सी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी मैसेजेस आप भेजें कोशिश कीजिए वो थोड़ा सा संक्षिप्त में हो, थोड़ा छोटा होगा तो बात कहने में सुनने में और आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। मैं समझ गया और आप भी समझ गए हैं कि हाँ, दिल की बात इसे ही कहते हैं, दिल तक पहुंचाना। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज की, आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स।

बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी छोटी पोती भार्गवी का पहला जन्मदिन है। मेरी ओर से बच्चे को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आशा करता हूँ आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से जी, हमारी गुड विशेष आपके पोती के साथ और आपके साथ, सभी दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं सबके साथ, सबके लिए हमेशा है। और ये खास दिन आपके लिए बहुत खास है, तो आज का जो दिन है उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए और हमारी शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा जो आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि ये खास दिन है, तो इसे खास तरीके से एंजॉय कीजिए। मोहम्मद शहजाद सूरत गुजरात से, बस इतना ही लिखा है जी, इसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो मेरे दोस्त सरकार लिखिए ना दिल की बात। मैंने ये पूछा है आज कि ऐसा कौन सा वाक्य आपकी जिंदगी का जब कोई आपको दूर का दोस्त, कोई भी, कोई इंसान पास लगने लगा, और पास का कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई रिश्ता वो दूर लगने लगा। कोई ना कोई वाक्य ऐसा जरूर रहा होगा, जरा गौर फरमाइएगा, मिल ही जाएगा। मोहम्मद कासिम कीरतपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से, बस इतना ही लिखा है, उसके आगे नहीं लिखा है। तो उम्मीद करूंगा अपने दिल की बात भी लिखेंगे। दोस्त कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। मोहम्मद जाकिर सेक्टर 12A पंचकुला मार्केट से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार। ब्रिजेश सिंह दीपू इटहुआ केसरगंज बहराइच से। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, तो बने रहिएगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा और भी लगेगा, एंजॉय कीजिएगा। हाँ, अपना जब जरूरत पड़ी तब बहाना बना दूर भाग गया था, वहीं एक बार मदद के लिए जरूरत पर अनजान हाजिर था। तभी कहते हैं परखने का पैमाना जो वक्त पर साथ दे वो अनजान ही सही अपना होता है और अपने पराए देखते हैं। अनिल शर्मा जी सरिता विहार से। सही फरमाया, लेकिन वो वाक्या नहीं बताया आपने कि ऐसा हुआ क्या था। कोई बात नहीं, अगर बता सकें तो जरूर शेयर कीजिए। आदरणीय कवि प्रेमचंद प्रेमी जी की प्यारी नन्ही परी पोती का, जो बिटिया का, भार्गवी का जन्मदिन है, ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं। मोहम्मद सरफराज आलम जी जो कि दशना बाजार अररिया बिहार से लिखते हैं, खुशियों की बारिश हो, मुस्कान तेरी पहचान, हर दिन महके जीवन जैसे फूलों की मुस्कान, चांद से चमके किस्मत तारों सा ऊंचा नाम, जन्मदिन मुबारक हो भार्गवी बिटिया रानी तमाम। ईश्वर से दुआ है कि नन्नी भार्गवी हमेशा स्वस्थ खुशहाल और कामयाब रहे। हमारी भी दुआएं हैं। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखती है, व्हेन आई गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू सिंगापुर माय क्लोजेस्ट वाज माय हस्बैंड हुम आई बेरली न्यू एंड माय फैमिली बिकेम माय डिस्टेंट रिलेशनशिप्स। थोड़ा कुछ वो लग रहा है मुझे इसमें कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब आप दूर थे घर से, एक दूरी वो होती है जब फिजिकली हम किसी से दूर चले जाते हैं ना। मैंने जो आपसे पूछा है जोया और तमाम दोस्तों से, वो ये पूछा है कि ऐसा वाक्या जब किसी परिस्थिति, कहते हैं ना सिचुएशन कंडीशन, कोई ऐसी बनी हो जहां पर आपको लगा कि कोई दूर का व्यक्ति शायद आपकी बात समझ रहा है लेकिन कोई पास का खास व्यक्ति भी वो बात नहीं समझ रहा, तो ऐसी कोई बात है तो वो बात शेयर कीजिए। आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अक्सर नोटिस किया है जिन रिलेटिव्स हमारे पर्सनल हैं वो काफी दूर हो गए हैं कुछ सालों से, एंड बाकी जिन लोगों से दोस्ती का रिश्ता है वो बिल्कुल अपनेपन जैसा रिश्ता निभा रहे हैं उनके कंपेयर में। अंशु शर्मा हसीनापुर मेरठ से जी, बिल्कुल आपने कहा, सही फरमाया। और एक दोस्त हमारे ये है, नमस्कार नमस्कार शुभ संध्या सरकार, अभी तक ऐसा कोई सा भी सिचुएशन नहीं आया है जब अपना पराया लगने लगे, और पराया अपना, रिश्तेदारी और लाइफ मस्त चल रही है जी। हीरामणि वर्मा दत्तरेंगी भाटा पारा से, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कभी हो, फिर कभी पूछेंगे तो जरूर बताइएगा। पंकज अमरावती महाराज से, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार, कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, आज के टॉपिक पर कहना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा वक्त आया था मुझे मेरे अपने रिश्तेदार से ज्यादा मेरे सहायता मेरे दोस्त की है, और अनजान लोगों ने की थी जिनसे मैंने कभी उम्मीद ऐसी नहीं की थी, लेकिन वो मेरी उम्मीद पर खरे उतरे थे। वक्त वक्त की बात है जी, बिल्कुल होता है, सभी की जिंदगी में ऐसा होता है। तो बस आज का टॉपिक भी ऐसे ही दिल में आया, तो मैंने कहा चलिए हमारे दोस्तों से पूछ ही लेते हैं। और कुछ दोस्त लिख रहे हैं लेकिन अपने दिल की बात नहीं लिख रहे और नाम भी नहीं लिख रहे, कई बार हेलो हाय भी लिख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरे तमाम दोस्त सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स का, तो जो आज मैंने अपने दिल की बात पूछी है तो उसका जवाब भी देंगे तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, एक बात जो हमेशा कहता हूं, जो मेरे दोस्त ड्राइविंग कर रहे हैं इस वक्त, है ना, गाड़ी चला रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है प्यार भरी, कि
अपना ख्याल तो रखिएगा जरूर, लेकिन दूसरों का ज्यादा

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं।

वेलकम बैक जी। छोटा सा अंतराल था, तो छोटे से अंतराल के बाद लौट आया हूँ। प्रोग्राम मैसल मसाला मिक्स का है और काफ़ी सारे जो दिल की बातें वो आ रही हैं। आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। मैं अपने थे, मेरे अपने जो थे वो दूर हो गए, जो बेगाने हैं वो अपने लगने लगे। मोहम्मद कासिम कीरतपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। लेकिन आपने ये नहीं बताया सरकार कि ऐसा वाक्या हुआ क्या जिस वजह से ये फीलिंग्स आई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, दिस इज सोनिया शर्मा, चंडीगढ़। मेरे साथ भी हुआ है, अपने पराए हो गए और पराए अपने। मेरे रियल फैमिली नाराज हो गई क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक बेटी अडॉप्ट की और उसकी शादी भी की। वो बेटी अब सबसे प्यारी हो गई है। वाह, क्या खूबसूरत काम आपने किया है। मुझे नहीं लगता ये नाराजगी वाला काम है, ये तो बहुत शाबाशी वाला काम है और अप्रिशिएट करने वाला है, मोटिवेट करने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो आपने बहुत ही सुंदर काम किया है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मोहम्मद सज्जाद, सूरत, गुजरात से। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जी, तो एंजॉय करते रहिए। नाराजगी भी खूबसूरत रिश्ता है, जिससे होती है वो व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। राजेश भल्ला जी, एडवोकेट, कंकड़ खेरा, मेरठ से। गहरी लाइन है जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, शो इज रनिंग वेरी सक्सेसफुली एंड ट्रैक्स आर सो ब्यूटीफुल। किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, बने रहिएगा। और भी अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ट्रैक्स लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। एक बार मेट्रो ट्रेन में सफर करते वक्त अनजान यात्री ने वरिष्ठ होने के नाते मुझे अपनी सीट बैठने को दी थी। वहीं एक पड़ोसी जानकार कॉलेज जाते हुए मुझे खड़ा देखकर भी सीट ऑफर नहीं की। ओके, तब से उसे अपना नहीं, खुद कर प्रायः बात करनी बंद कर दी। अपना कौन कोई भी हो सकता है जो मदद कर हाथ बढ़ाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा। अनिल शर्मा जी, सरिता विहार से। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, अपने पराए सबने मेरा साथ दिया। रंजीत कुमार मंडल, सिकटी, अररिया बिहार से। बहुत ही खुशकिस्मत है सरकार, खुशकिस्मत कि ऐसा वाक्या नहीं हुआ है। और हम तो यही कहेंगे ऐसा ना ही हो। और जो दोस्त जी बिल्कुल लिख रहे हैं, अभी भी कई दोस्त हैं जो नाम लिख रहे हैं और अपने दिल की बात नहीं लिख रहे हैं, तो कहना चाहूंगा लिखिए अपनी बात जो है हमसे शेयर कीजिए, तो मजा आ जाएगा प्रोग्राम का, सुनने का भी। और देखिए ना, आपके अनुभव से कई लोग जो है हमारे दोस्त सीखते भी है ना, एक दूसरे के जो आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो इससे फायदा ही होता है। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स।

0: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। हेलो सर, हेलो जी, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली। हाउ आर यू? ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट आई डिड नॉट रिमेंबर एनी सच इंसिडेंट रिगार्डिंग माई एनी रिलेशन, वॉट एवर रिलेशन आई हैव विद माई कजिन्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेंटेन दैम एंड keep them strong. Wow, wonderful, good experience, and I wish may God grant that this never happens to you, my dear. खुश रहें हमेशा, और बस खुश रहें और खुश रखे भी। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से अपने निराले अंदाज के साथ हाजिर हैं जी। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सरकार बुरे वक्त में जो आपका साथ दे वो पराया भी अपना होता है। अपने दोस्त वो नहीं होते जो तस्वीर में आपके साथ खड़े होते हैं, सच्चे अपने दोस्त वो होते हैं जो तकलीफ में आपके साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। आपकी भी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं जी। वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड सॉन्ग सिलेक्शन, हर टचिंग, शुक्रिया सरकार। अपनों का विश्वास टूट गया और रेनबो रेडियो के साथ विश्वास और एक नया रिश्ता जुड़ गया। मैं बहुत खुश हूं, दिल से दिल तक सुनीदा नेगी, सोलन हिमाचल प्रदेश से। और सोनू लिखा है मेरे ख्याल से ब्रैकेट में, तो ये तो आपने दिल गार्डन गार्डन कर दिया, बाग बाग कर दिया जी। हमारे साथ जुड़ेंगे तो खुश ही रहेंगे। मिशबास शमसी फ्रॉम नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। कुछ रिश्ते जिन्हें हम नहीं जानते वो भी वक्त पर अपनों की तरह साथ निभाते हैं, और कभी कभी हमारे अपने रिश्ते ही हमसे दूर और पराये हो जाते हैं। यही जिंदगी का सच है कि कौन अपना है और कौन पराया, ये वक्त ही बताता है। ये बात तो है जी, वक्त बड़ा बलवान। आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अर्ज हो। ये जरूरी नहीं कि अपने अपने होते हैं, कभी कभी गैर भी अपनों से ज्यादा होते हैं। गन्नौर से आदिल कमीर तस्दीक अली मुजफ्फर अली साहब, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपका भी सरकार। शमशुल कमर राही गंज दंदवारा से लिखते हैं, फूलों की खुशबू, ठहारों वहारों की रौनक, चांदनी की ठंडक, झरनों का तरन्नुम, इन सब में एक नाम पोशीदा है और वो नाम है दोस्ती। जिंदगी की कठिन दौर का साथी एक दोस्त ही होता है। ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ है, जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं तो एक दोस्त ही है जो अंधेरी जिंदगी में एक रोशन सितारा बनकर दाखिल होता है। वाह, क्या एक्सपीरियंस, अनुभव आपने साझा किया हमारे साथ। और गाने की एक फरमाइश की है दोस्त, गाना मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है तो ये गाना मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, मगर जो गीत है वो आपको यकीनन पसंद आएंगे ये कह सकता हूं। और तमाम दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जो दिल की बात है और आप जो हमसे साझा करते हैं, इस साझा करने से कहते हैं ना कई बार, जो आपका गम है अगर उसे बांटो दर्द को तो वो कम हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो कुछ इस तरह का ही है फसाना ये जो दिल की बातों का है, कि अपनी दिल की बात हमसे आप जब साझा करते हैं, और देखिए ना दिल से ही करते हैं, जब पढ़ता हूं मैं यहां पर संदेश तो फील कर सकता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि दोस्ती निभानी हो तो वाह खूबसूरत इस तरीके से। तो कह सकते हैं, अभी हमारे एक दोस्त भी थे कि सोनू जो हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने कहा भी कि आकाशवाणी रेनबो का जो साथ मिला तो उनकी जिंदगी में बहार आ गई। तो हाँ जी, हम भी यही कहते रहते हैं, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, रिश्ता दिल से दिल तक का ही है।

हाँ जी, प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, हमें पता है, आपके मैसेज दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं तो कि मेहनत जो है हमारी सफल हो रही है, बिल्कुल आपके लिए हमेशा जी। वेरी नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग अशोक रोहिला मेरठ से, शुक्रिया सरकार, और बने रहिएगा, अभी वक्त है हमारे पास, एंजॉय करेंगे, यादगार बनाएंगे इस पल को। हॉली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल साहब लिखते हैं, प्रोग्राम है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और गीत का तो क्या कहना, आप एक से बढ़कर एक सुनवा रहे हैं जी। कोशिश यही रहती है प्रोग्राम भी पसंद आए, गीत भी पसंद आए, तो हमारा ये जो पल है वो यादगार बन जाए। मैसेज मसाला मिक्स, शुभ संध्या सरकार। रिश्तों में दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही मजबूत होता है, जिसे दोनों पक्षों को बराबर मिलकर निभाना चाहिए। बहुत ही मधुर गीत सुनवाया, और भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और जो इस तरह के आप अपने संदेश भेजते हैं, जिसमें आप अपनी अनुभव को साझा करते हैं, वो यकीन मानिए हम भी बहुत कुछ सीखते हैं इन्हीं चीज़ों से। तो दोस्ती तो यही चीज़ है ना, आपस में तालमेल यही होता है सरकार, कि आपसे हम कुछ सीखें और हम आपका मनोरंजन कर पाए, तो यही एक सच्ची दोस्ती की निशानी है। अगली बार कब आऊंगा, अगली बार अभी मालूम नहीं है, लेकिन मिलूंगा जरूर आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, ये आपको कह सकता हूं, बने रहिएगा। हाँ, आज रात 8 बजे म्यूजिक मस्ती का जो प्रोग्राम होगा, उसमें यकीनन आपसे मुलाकात होगी जी, होगी।

एक बार मुझे कॉलेज में इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में माइनर प्रोजेक्ट सबमिट करना था, किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया। तो मैंने अपने कजिन ब्रदर से उसका प्रोजेक्ट मांगा तो उसने नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा था। और मेरे फ्लैटमेट दोस्त की सहेली ने उसका प्रोजेक्ट दे दिया था, जिसको मैं जानता भी नहीं था। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से। देखिए ना कितना खूबसूरत आपके साथ ये वाक्या हुआ। ये भी एक याद रखने वाली, मेरे ख्याल से हमेशा याद रखने वाली बात है। जब से मोबाइल आया है बहुत कुछ अच्छी हुई, लेकिन लोग एक ही घर में रहकर अपनों के रिश्ता कमज़ोर हो गया है। मोबाइल की दोस्त ज़्यादा अपना, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। मीरा सिंह सिलचर आसाम से। मैं समझ गया आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का आपने उदाहरण दिया, इसमें ज़्यादा मशरूफ हो गए हैं हम लोग, ज़्यादा जुड़ गए हैं, कनेक्शन इससे ज़्यादा हो गया है और अपने जो दोस्त सामने होते हैं उनसे शायद कम हो गया है ना, यही कहना चाहते हैं। हाँ ये बात है और इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। सुनीता नेगी लिखती हैं, आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद आता है। योर वे ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव, दिल से दिल तक बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। मैं तो यही कहूँगा कि दिल से बोलता हूँ तो अगर दिल तक पहुँचता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना। वक्त थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे और जो गाने अभी बचे हैं मेरी प्लेलिस्ट में वो मैं आपको सुनवा ही देता हूँ। 8 बजे रात को म्यूजिक मस्ती के प्रोग्राम में भी मुलाकात होगी सरकार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वेलकम बैक जी। प्रोग्राम तकरीबन उस मोड़ पे आ गया है जहाँ से मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने कहा म्यूजिक मस्ती का प्रोग्राम होगा रात 8 बजे, तो मुलाकात करेंगे, बिल्कुल करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउडडाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पंजाब किंग्स को 223 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Ago, that was "Hey Boy, Hey Girl" by the Chemical Brothers from their first single, from their album Surrender. Alrighty, there we go. Time right now exactly is 19:31, 7:31. The show is called Live Wire. This is Dave with you guys, and yes, we'll be right back after these short messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन।

0: कला से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आय हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे।

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: Alrighty, we're gonna take a quick break and be right back.
1: Be right back.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: It's time for me to say karan bye bye, see you guys very soon, till then take care and have fun.

हाँ जी, मच गया है धमाल, और ये धमाल मचेगा पूरे 1 घंटे, क्योंकि ये जो वक्त है म्यूजिक मस्ती का है जी। बिल्कुल, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो, जिसे कहते हैं म्यूजिक मस्ती। और आज के सफर में मैं रहूंगा आपके साथ, आपके अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का।

पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार, म्यूजिक मस्ती बहुत बढ़िया प्रस्तुति कार्यक्रम कर रहे हैं और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और भी अच्छे ट्रैक हैं लाइन में जो आप सुनेंगे, और बने रहिएगा प्रोग्राम के साथ। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से जुड़ी हैं हमारे साथ, और तमाम और दोस्त सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का।

0: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, वेरी नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग अशोक रोहिला मेरठ से, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बने रहिए, और भी अच्छे ट्रैक आ रहे हैं आपके लिए, गाने अच्छे हैं, मजा आ रहा है। सुरेश वैष्णव आएगा जी, बिल्कुल आएगा, जैसा कि मैंने कहा, और भी बेहतरीन ट्रैक्स लाया हूं मैं आपके लिए, तो एंजॉय कीजिए। और जो दोस्त मेरे इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके लिए हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखिए, लेकिन साथ में दूसरों का भी ख्याल रखिए, फिर देखिएगा प्रोग्राम सुनने का जो मजा है वो दुगना हो जाएगा।

0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आदाब, सॉन्ग पसंद आ रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा और भी सॉन्ग्स हैं जो आपको पसंद आएंगे सरकार।

सॉन्ग सिलेक्शन बहुत मस्त है। एमपी के रोड पर ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं योगेश गुप्ता, आस्था एमपी से। ध्यान रखिएगा अपना भी और दूसरों का भी। खिड़की

हाँ जी, मज़ा आ गया, बिल्कुल आया जी आपके मैसेजेस से पता लग रहा है। और सुनीता नेगी सोनू सोलन एचपी यानी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और प्रोग्राम अच्छा लगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह बने रहिएगा आकाशवाणी रेनबो के साथ, और भी एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स आगे आने वाले हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा बिल्कुल आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से आपके आप सभी से मिलूंगा, तो बने रहिएगा जैसा कि मैंने कहा। और इस प्रोग्राम से मैं अभी आपसे विदा लूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो पल है उससे भी एंजॉय कर ही लेते हैं।

वक्त कम है और आखिरी ट्रैक जरूर मैं आपको सुनवाऊंगा। तो मोहम्मद सरफराज आलम जी, जो कि यार दसना बाजार से अररिया बिहार से जुड़े हैं और बहुत लंबी सी एक कह सकता हूं कि एक लाइन लिखी है और पोयम लिखी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले प्रोग्राम में जब मुलाकात होगी तो आपकी ये जो ख्वाहिश है, इच्छा है और जो आप कह रहे हैं वो जरूर पूरी करेंगे। फिलहाल वक्त कम है तो मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा सरकार, और अगली बार मिलेंगे आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। मेरे साथ बने रहने के लिए। हाँ जी, तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्त कम है तो विदा लेना चाहूंगा इस प्रोग्राम से। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 9:52 रहना मौज आ गई है प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हिना मौज के साथ आज आप टटोलेंगे अपनी खूबसूरत यादें आकाशवाणी पर इस प्रोग्राम के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसको हम शुरू कर रहे हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

9:12 हिना मौज है आपके साथ। प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आई हूँ। थोड़ी सी तबीयत जरूर मेरी नासाज है, आवाज भी तब्दील आपको लग रही होगी, लेकिन बात है जिंदगी की। तो जिंदगी में तो दोस्त ये सारे उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, और ये भागती दौड़ती जिंदगी हमारे लिए बहुत कुछ अपने अंदर रखती है। वक्त वक्त पर वो सब चीजें सामने आती हैं जो जिंदगी हमें देती है या फिर जिंदगी से हम पाते हैं। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि किसी भी बात का इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जिंदगी में हर बात हर चीज ना हमारी मर्जी से होती है ना हमारे समय से। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं सब कुछ जल्दी पाने की, कुछ रिश्तों को बचाने की, कुछ सपनों को पकड़ कर रखने की, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। और तब समझ में आता है कि ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है और ना वक्त से पहले, लेकिन जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए भी तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे कितना भी रोक लो, एक दिन वो चला ही जाएगा। इसलिए दोस्त हर बात पे परेशान होना छोड़ दो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा खुद पर भरोसा रखो, और थोड़ा ऊपर वाले के फैसलों पर भी भरोसा रखो, क्योंकि कई बार किसी भी चीज को मिलने में देर जरूर होती है दोस्त, लेकिन जो मिलता है वो सही समय पर मिलता है और वो हमारा होता है, इसलिए हमें मिलता है। तो मस्त रहो, आजाद रहो, फिक्र से दूर रहो, अपने आप को खुश रखो।

बिल्कुल सही दोस्त। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कुछ बदलने पर मजबूर कर देती है, और मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज है, हर हाल में खुश रहने का हौसला अता करती है। लेकिन बात जिंदगी की हो रही है तो जिंदगी में मोहब्बत एक पार्ट जरूर है, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी, बहुत तवील और बहुत सारी चीजों के साथ मिलकर बनी हुई है। दोस्तों जिंदगी एक ऐसी किताब है, ये कहना गलत ना होगा, जिसका हर पन्ना नया होता है। कभी खुशियों की धूप तो कभी गमों की छांव, कभी हंसी की महफिल तो कभी तन्हाई का सन्नाटा। लेकिन अगर दोस्त जिंदगी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है कोई, तो वो है इसमें आने वाले मोड़। जी हाँ, वो मोड़ जब जिंदगी में आते हैं तो वक्त वक्त पर कुछ बदल जाता है, और ये मोड़ जो है वो हमारी जिंदगी में कुछ बदलते हुए दिखाई देते हुए आगे बढ़ते हैं। इन मोड़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, और उनसे मुंसलिक, उनसे अटैच्ड जो हमारी यादें होती हैं या यादें जो उनके साथ हमारी बनती चली जाती हैं, उन पर भी आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। बने रहिए हमारे साथ, आकाशवाणी FM रेनबो पर हिना मौज है आपके साथ, और ये खूबसूरत से प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी याद आती रही, टटोलेंगे आज भी यादों को आप सबकी, हमारी, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एक जैसी और एक सी है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी।

इसी संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप, हिना मौज के साथ प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। वक्त बता दें आपको 9:20:16। दोस्तों बात हो रही थी जिंदगी की और फिर जिंदगी में आने वाले उन मोड़ों की जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, जो हमें बदल कर जाते हैं और जिनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों जिंदगी में आने वाले ऐसे मोड़ जो इंसान को बदल देते हैं, सोच को इंसान की बदल देते हैं और कई बार पूरी तकदीर को बदल कर रख देते हैं। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं दोस्तों जो अचानक आ जाते हैं, जैसे किसी अपने का मिल जाना या किसी का अचानक से बिछड़ जाना। कभी एक छोटी सी सक्सेस इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है तो कभी एक नाकामी उसे ज़िंदगी का असली मतलब सिखा देती है। हर किसी के चेहरे नुमाया हो जाते हैं, कौन आपका कितना है ये पता चल जाता है। इतनी छोटी सी नाकामी आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल कर रख देती है। हर किसी चेहरे से जब नकाब उठते हैं और आपको ये एहसास होता है कि ये इंसान जिसको मैं अपना बहुत क्लोज फ्रेंड समझ रहा था या अपने बहुत क्लोज समझ रहा था या समझ रही थी, वो इंसान तो वैसा है ही नहीं जैसे मैं उसे समझता था या समझती थी। उस वक्त इंसान के दिल पर बहुत ज्यादा तकलीफ जरूर गुजरती है, लेकिन आंखें खुल जाती हैं और रास्ता साफ तौर पर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो जिंदगी में वक्त गुजरते हुए हमें मिलती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं। जिंदगी जीते हैं हम, लेकिन वक्त वक्त पर जब ये मोड़ हमारी जिंदगी में आते हैं तो तब हमारी जिंदगी में बदलाव शुरू होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जाने के बाद आपको उनकी याद इतना सताती है कि ना चाहते हुए भी आप उनको याद करते हैं। ये पता होने के बावजूद भी याद करते हैं कि उन लोगों की जिंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसी अगर सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती है तो अपने आप को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी में जो इंसान आपको नहीं चाहता, आपको नहीं समझता, वो इंसान आपको कहने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी नहीं समझेगा। ये चीज़ जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।

जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनको हम ये कहते हैं कि आपके बगैर तो हमारा दिल ही नहीं लगता। लेकिन हुजूर, जब कोई आपकी ज़िंदगी में ठहरना नहीं चाहे तो उनके बगैर दिल लगाना सीखिए, वरना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ज़िंदगी की बात हो रही है दोस्त, तो ये कहना गलत ना होगा कि ज़िंदगी की अगर शुरुआत देखी जाए तो बचपन से होती है। जब हम छोटे होते हैं, जहाँ ज़रा सी समझ आते ही सपने हमारे पास इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उन सपनों को पाने की जो फिक्र होती है वो उस वक्त कुछ कम सी होती है, क्योंकि अल्लड़पन होता है, बचपन होता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जवानी का मोड़ आता है जहाँ फैसले लेने पड़ते हैं। हर तरीके के फैसले आपके सामने खड़े होते हैं और उनको आपको लेना पड़ता है कि आपने क्या करना है, कैसे बढ़ना है और कहाँ तक जाना है, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और हर फैसला ज़िंदगी की दिशा तय करता है उस वक्त। लेकिन अगर इसी वक्त देखा जाए तो कभी ज़िंदगी के मोड़ पर हमें ज़िंदगी में आने वाले रिश्तों को भी तलाशना पड़ता है, अपने साथ जोड़ना पड़ता है। और जब रिश्तों के ये मोड़ आते हैं तो वहाँ पर भरोसा बनता भी है और भरोसा टूटता भी है, और यही भरोसा हमारी ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत सारे फैसले लेने की हमें कुव्वत भी अता करता है।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर

0: उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

नमज कर 41 मिनट 20 सेकेंड है ना, मौज के साथ हैं आप, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जिंदगी में गुजरने वाले उन सभी मोड़ों की जो हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। बचपन की बात हुई, जवानी का जिक्र छुड़ा, लेकिन दोस्तों जवानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है, कोई ऐसा वक्त आता है जब हमें अपने करियर का भी एक मोड़ चुनना पड़ता है, जहां इंसान सोचता है कि वो जो कर रहा है क्या वही सही है। और फिर एक मोड़ ऐसा भी आता है जब इंसान खुद से मिलना शुरू होता है, खुद से उसकी पहचान होती है और उसे समझ आने लगता है कि दुनिया की भीड़ से ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिल की आवाज़ को सुनना। और जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, अपने लिए कुछ करना शुरू करते हैं, उस वक्त आपके दिलो ज़हन को एक सुकून का एहसास होता है।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हुजूर वक्त हो चला है 9:54:55 यानी कुछ ही देर में इस प्रोग्राम से लेंगे विदा और मिलेंगे रंगे महफिल में आपसे। लेकिन इस प्रोग्राम में चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी दोस्त कि हर मोड़ आसान नहीं होता, कुछ मोड़ रुलाते हैं, कुछ सिखाते हैं और कुछ हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना जाते हैं। लेकिन सच यही है दोस्त कि अगर जिंदगी में मोड़ ना हो तो सफर भी अधूरा लगता है, क्योंकि सीधी सड़कें सिर्फ मंजिल तक ले जाती हैं, लेकिन मोड़ इंसान को अनुभव देते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई नया मोड़ आए तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। इसी उम्मीद और एहसास के साथ कि आपकी जिंदगी में हर मोड़ खुशी और तरक्की का सबब बने, इस प्रोग्राम में हिना मौज इजाजत चाहती है। मिलती हूँ रंगे महफिल में, पर आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आपके लिए है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक समीक्षा की वार्ता की। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसरों पर संभावनाएं तलाशने के लिए भी विचार किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचातानी और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन की एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिछा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से अधिक मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। रूस में ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगोई सोबियानिन ने बताया कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ड्रोन हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल

हो गए। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाना तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। भारत की श्रियांशी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रियांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: There we go. That was Coward of the Country, Kenny Rogers. And yes, we're getting messages over here right now. So Kishan Vanjani, Neelam Swati and Kishu, we got your message over here. And we also got your message, our regular listener from South Extension, Delhi. There we go. Harpreet, there we go. So Hardeep, we got your message over here. And yes, I will play this track that you requested over here right now. But before that, we'll take a quick break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: Alrighty, there we go. That was a live version over there of Guns N' Roses performing, and this track was Paradise City. Time right now is 10:52 this Sunday evening, and we'll be right back after these messages. Don't go anywhere, we'll be right back.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा

आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के

पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 11:05:35 वादे के मुताबिक हिना मौज हाजिर खिदमत है प्रोग्राम रंगे महफिल के साथ एक बार फिर आकाशवाणी FM रेनबो पर। मेरा एक बार फिर से पुरखलूस आदाब कबूल कीजिए। गजल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात, गजल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ग्यारह बजकर 24 मिनट 2 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम रंगे महफिल। गजलों का कारवां रवा दवा है। दोस्तों, कहा जाता है कि गजल मोहब्बत की जुबान है, लेकिन सच तो ये है कि गजल सिर्फ इश्क जाहिर नहीं किया करती, बल्कि इंसानी जिंदगी का हर पहलू बयान करती है। जब कोई दिन भर की थकान के बाद अपने सपनों को संजोता है, तो गजल उसके सपनों के पीछे छुपे दर्द को टटोल लेती है। गजल के लफ्ज उसके दर्द की दवा बनते हैं और सुकून का एहसास दिलाते हैं।

दोस्तों, गजल की बात हो रही है तो ये कहना गलत ना होगा कि गजल कभी किसी की खामोशी पड़ती है तो कभी भीड़ में रहकर भी। जब इंसान अकेला महसूस करता है तो गजल उसके दिल का हाल बयान करती है। गजल हमें बताती है कि जिंदगी सिर्फ हंसी का ही नाम नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी टूटने, बिखरने, संभलने और फिर मुस्कुराने का सफ़र है ये ज़िंदगी, और इस सफ़र को बखूबी बयान करती है गज़ल, क्योंकि गज़ल के अंदर

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ ज़रूर, ये छोटी छोटी बातें, मुलाकातें और वादे वफा करने वाली बातें, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इन्हीं सब एहसास जज्बात को एक शायर जब कागज़

पर पिरोता है तो गज़ल में तब्दील कर दिया करता है। दोस्तों, एक आम इंसान की ज़िंदगी में रोज़ नए संघर्ष आते हैं, कभी रोज़गार की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी अधूरे सपनों का दर्द, और गज़ल इन तमाम एहसास और जज्बात को नर्म लफ्ज़ों में पिरो देती है। यही वजह है कि जब कोई शेर दिल को छू जाता है तो इंसान कह उठता है कि ये तो मेरी बात है, ये तो मेरे ही दिल का कोई गोशा है जो बयान किया जा रहा है। गज़ल हमें रुलाती भी है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जीना भी सिखाती है।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

11:54 और 48 सेकंड, कुछ ही देर का वक्त हमारे पास बाकी है गज़ल की गुफ्तगू करने के लिए। दोस्तों, गज़ल कहती है कि अंधेरों के बाद उजाला ज़रूर आता है और हर टूटे दिल में फिर से उम्मीद जग सकती है। गज़ल

इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो अपनी तकलीफों में अकेला नहीं है। दुनिया में और भी दिल हैं जो उसी दर्द, उसी इंतज़ार और उसी मोहब्बत से गुजरते हैं। गजल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, कि वो बड़े बड़े महलों की नहीं, बल्कि आम इंसान के छोटे छोटे जज्बातों की, एहसासातों की बात करती है। कभी चाय की प्याली में छुपी तन्हाई, कभी बारिश में भीगी यादें, तो कभी अधूरी मोहब्बत का दर्द, हर एहसास को गजल बड़ी खूबसूरती से जी लेती है। इसी खूबसूरत और नायाब बात के साथ आखिरी गजल आपकी समातों की नज़र करते हुए हिना मौज आप सब से अब रुख्सत तलब करती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सिटी लाइट्स में, तो बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर और सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम्स।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर दहेक पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार भारत और स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर राजी हो गए हैं। यह सहमति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन के बीच हुई बातचीत के दौरान बनी। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के 194 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। मिचेल स्टार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में कल धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर रात के 12:05 हो चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम जीरो आर शो का, तो आइए हमारे साथ रेनबो पर और बने रहिए, लेते रहिए संगीत का आनंद।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। यह आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंद

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।

0: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। यह आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारी

के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है।
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथ ही स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:05:53 और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो लीजिए आनंद लेते हैं इन खूबसूरत से गीतों का मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। ये प्यारे से गीत आपके लिए है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
12: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह का 4 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय में सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरों के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे।

नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 4 दिनों का अंतर हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:05 और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। ये प्यारे से गीत आपके लिए। आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी अलमास रजा का नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्री

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सारेगामा ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। रूस में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में

कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ओरफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 5:55। लीजिए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रसा का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1-2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।